0: लाइका गोल्ड
1: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
2: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर
1: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय टैनियो अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
2: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन
1: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स
2: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50 प्लस एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी
1: एंड द बेस्ट पार्ट टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000
2: टू बुक कॉल आवर लंदन ऑफिस ऑन 02039635757 Greens by Danube Prime location
1: High appreciation
2: In Dubai
3: Ears are great, aren't they? One on each side of your head for stereo It's because of ears that radio ads can amplify your advertising 40 million adults listen to commercial radio every week That's 80 million ears Give or take See radio differently at radiocentre.org
4: 7 stations One podcast, one mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk.
5: Bollywood ke legend kalakar, sirf Leica Gold par.

0: Laika Gold. Laika Gold.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410। साफो ट्रेवल at all protected.
2: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
3: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
2: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
3: And you didn't pay those massive roaming charges?
2: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
4: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
5: रात भर न थमे न रुके, क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर

0: ताली तक धीमी तक ताली तक जमी तक धला आम तक जग तक ताली के नक तक नक तक जम तक नक नक जम तक नक नक जम तक नक नक जम तारी ता जग तारी ता जन जाने को गुदारी दाबू तारी केटे तक जम तारी ता जग तारी ता जन जाने को गुदारी दाबू तारी केटे जम तारी जग तारी जग नक तक तक जन तक जन तक जन तक जम तारी जग तारी जाने जाने को तक जन तक जम तक जन तक तक दंग गुदम कर दंग गुदम तक दंग गुदम
1: पाखा नारंगी की पाखा पाता चूचा रंगी चालान जैसे मस्त शराबी हालत रंग बिरंग

गावे को गुण वडियाईया चार, गावे को विद्या विखम विचार, गावे को साज करे तनखे, गावे को जी लय फिर दे, गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखे हादरा दूर।

ना भी जानिए नाल चले सब कोई चंगा ना और खाए के जस कीरत जागले जे तिस नदर ना आवई ता बात ना पूछे के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे तेहा कोई न सुजई जे तिस गुण कोई करे।

मन होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने मार्ग ठाक न पाए मन्ने पथ्यों प्रगट जाए मन्ने मग न चले पंथ मन्ने धर्म सेती संबंध।

होए लख दरियाओ कुदरत कवन कहां विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पक्षार असंख मोन लिवलाए तार कुदरत कौन कहा।

मूर्ख अंध गोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलवड़ हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए।

साई भलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

जिव तिस दी वडियाई, जो तिस भावे सोई करसी, हुक्म ना करना जाई। सो पातशाह साहब नानक रहन जाई।

हत जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध।

कर कर वेखै सृजनहार, नानक सच्चे की साची कार। आदेश तिसे आदेश, आद अनिल अनाद अनात, जुग जुग एको वेश, एक दूजी बोला खोवें लख होवें लखवीस, लख लख।

जोर ना जुगती छुटै संसार, जिस हथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए। राती रुती छित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोहन पंच परवान, नदरी करम पवै निशान, कछ पका

0: ये जमीन गा रही है, आसमां गा रहा है. What a beautiful track from the movie तेरी कसम, एंड दिस इज इन द वोकल्स ऑफ अमित कुमार. अच्छा, इस मूवी में थे कुमार, गौरव एंड द ब्यूटिफुल पूनम ढिल्लों. सो हु आर यू? आई मीन, आई एम श्योर आपको पता होगा दैट अमित कुमार सैंग ऑल कुमार गौरव सॉन्ग्स इन द मूवी, इन हिज डेब्यू मूवी लव स्टोरी. एंड वो गाने इतने इतने हिट हुए दैट अमित कुमार एक्चुअली बिकेम द वॉइस ऑफ कुमार गौरव. ऐसी बहुत सारी फिल्मी बातें मैं आपके साथ करता रहूँगा. आई एम वीर इन फॉर द लवली दीप राजा, गिविंग यू कंपनी ऑल द वे टिल 10 AM ऑन योर फेवरेट रेडियो स्टेशन लाइक अ गोल्ड.
1: WhatsApp message like a gold now on 0744 23 23 23. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: So your £1 in British sterling can get you up to 127.2 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Leica Gold.
2: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors. Specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probate, and for other legal requirements.
0: Well, I'm sure all of us are super excited for the match later today between Norway and the home team, England. And that's at 10 PM. And of course, don't forget, you can get your 15 minutes free legal advice with our sponsors, Rack Law, if you mention Leica.
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
3: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM.
4: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208 922 3344, a 24-hour line.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
5: high appreciation
6: in Dubai.
7: भजन फिनोमिनन अब लंदन में धमाके करने आ रहा है. बैकस्टेज सिबलिंग्स परफॉर्म लाइव फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द यूके. जॉइन द पायनियर्स ऑफ भजन जैमिंग ऑन फ्राइडे द 9th एंड सैटरडे द 10th ऑफ अक्टूबर एट SKLPC नॉर्थोल्ट. एक शाम सोलफुल म्यूजिक, डिवोशन और एनर्जी के नाम. टिकट्स बुक कीजिए ऑन SKLPC.com/BSS. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइका रेडियो नेटवर्क.
8: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है. शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए. गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है. जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी. आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉग के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं.
9: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208 574 8410. दैट्स 8574 8410. साउथ हॉल ट्रेवल.
10: ऑटो प्रोटेक्टेड।
11: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
10: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
11: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
10: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
11: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
10: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
12: राइस खरीदने का परफेक्ट टाइम आ गया है। बाय 20 केजी टिल्डे बासमती राइस एंड गेट 1.5 केजी गुलाब केनियन टी एब्सोल्युटली फ्री। मिक्स एंड मैच टिल्डे बासमती पैक्स टू मेक अप टू 20 केजीस, यानी कि 4 टाइम्स 5 केजी या 2 टाइम्स 10 केजी या 1 टाइम्स 20 केजी। दिस स्पेशल ऑफर इज अवेलेबल एट ऑल क्वालिटी फूड स्टोर्स। हरी, ऑफर एंड्स व्हाइल स्टॉक्स लास्ट। क्वालिटी फूड्स, क्वालिटी और वैल्यू दोनों एक साथ।
13: 23 डेज साउथ अमेरिका इन नवंबर और अप्रैल। फर्स्ट 10 पैसेंजर्स अप टू 300 ऑफ। कॉल सोना टूर्स ऑन 0208951011 or visit sonatours.co.uk.
14: Come on, England! Roar it, score it, bring the World Cup home. All the best to England from Leica Radio Network. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
15: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: चलो ये भी वादा है, कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिस अमेजिंग ट्रैक इन द वोकल्स ऑफ किशोर दा एंड आशा भोसले फ्रॉम द सुपर हिट मूवी दीवार. आई मीन दिस इज वन मूवी जो आप कभी भी देख सकते हो एंड इट इज सुपर एंटरटेनिंग. क्या डायलॉग्स है, आई लव यू नो वो जो डायलॉग्स होते हैं बिटवीन शशि कपूर एंड अमिताभ बच्चन. वन ऑफ माई फेवरेट डायलॉग्स इज जाओ पहले उसका साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था. And you know, आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? And then शशि कपूर in a style says, मेरे पास माँ है. Ah, what lovely dialogues, क्या लिखे हैं जावेद साहब ने. I mean, amazing movie. And if you've not watched it, I'm sure हम सब ने देखी होगी, but if you've not watched it, definitely, definitely watch it.
1: ये है Like a Gold. Hey, this is Sandy Shah. Drive you home every Monday to Friday between 4 and 7 p.m. with the best tunes, mind games, and a bit of Yeh Yavo. Only on Like a Gold.

0: Well, that's so true, right? कि प्यार से रास्ता तो क्या जिंदगी कट जाती है. I mean, if there's love in your life, then life becomes so easy to live. This lovely track in the vocals of Suresh Vadkar and Lata Mangeshkar from the super hit movie Ram Teri Ganga Maili. I mean, Raj Saab was an amazing director. वो concepts को लेके इतनी beautifully ये movies बनाते थे. Of course, this was a debut for Mandakini and Rajiv Kapoor for a lovely movie. And if you've not watched it, again, another good movie to watch.
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Lotto from the National Lottery now gives you two chances to win with every ticket. So it could be you, and it could be you. You, and then the same you, again. You. One ticket, two chances to win. New Lotto. It could be you, and it could be you. See website for Lotto changes. Rules apply. Players must be 18 or over.
3: Ye hai Laika Gold.
4: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
5: TravelHub, best service with unbeatable price.
4: At all protected.
5: Visit TravelHubWorld.com.
6: UK singers, this is your moment. For the first time, ZTV's iconic singing reality show, Sare Gamapa, is holding auditions in London. If you're 18 and over and can sing in Hindi, register now. Auditions take place Sunday, the 26th of July at St. James Court at the Taj Hotel, London. Your voice could be the next big discovery. Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
7: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share and we give the rest back to you as cashback.
6: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
7: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915 or visit cashbackremortgages.co.uk.
6: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
8: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
9: आ सितंबर पेरिस मा इतिहास लखाई रह्यो छे.
10: BAPS मंदिर नो ओपनिंग अने स्टार टूर्स तमने लई जाई आप पवित्र यात्रा पर.
9: यूरोप ना 3-9 दिवस ना टूर,
10: फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली अने जर्मनी साथे
9: दर्शन पण अने यूरोप पण.
10: सीट्स जल्दी भराई रही छे, आज ही बुक करो स्टार टूर साथे.
9: कॉल 0208900-2323 द स्टार टूर्स.
10: ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन.
11: यार कभी कभी अपने देश के छोले भटूरे, राजकचोरी और मिठाइयों की बहुत याद आती है,
10: तो फिर इंतजार क्यों? हॉन्स्लो एंड साउथ हॉल के बाद अब बीकानेर वाला आ गया है गैंसिल इलफोर्ड में.
11: सच?
10: बिल्कुल, देश का असली स्वाद, लाजवाब मिठाइयां और अपनेपन की खुशबू सब एक ही जगह.
12: आज ही विजिट करें बीकानेर वाला 513-519 क्रैनबुक रोड, गैंस हिल, इलफर्ड, IG2 6HA. कॉल करें 07555-506-015. बीकानेर वाला, टेस्ट ऑफ इंडिया नाउ इन इलफर्ड.
13: Discover Malta and Gozo with a Twin Center Island Escape. Fly from a choice of UK airports year-round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
1: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
14: Cool music for a super hot summertime on the Leica Radio Network.

0: यार बिना चैन कहा रे, दिस अमेजिंग वाला गाना फ्रॉम द मूवी साहिब इन द वोकल्स ऑफ एस जानकी एंड बप्पी लहरी. ऑफकोर्स इस मूवी में थे अमृता सिंह एंड अनिल कपूर. डिड यू नो दैट दिस सॉन्ग इज ऐश्वर्या राय's फेवरेट नंबर, एंड ये मेरा फेवरेट नंबर भी है. Coincidence.
1: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: Southall Travel is pleased to announce that the FCDO has lifted its advice against all but essential travel to Dubai. Call Southall Travel for the most competitive Dubai deals on 0208-574-8410. It all protected.
1: Holiday breaks were brought to you by

0: कब हमर करे पुकार, दिस प्यारा वाला गाना इन द वोकल्स ऑफ रफी साहब फ्रॉम द मूवी तेरे घर के सामने. व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग.
1: ये है लाइका गोल्ड.

0: इतना तो याद है मुझे दिस प्यारा वाला गाना इन द वोकल्स ऑफ रफी साहब एंड लता मंगेशकर फ्रॉम द मूवी महबूब की मेहंदी.
1: लाइक अ गोल्ड, पार्ट ऑफ द लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क इन द यूके.
0: ये लास्ट गाना दिस आवर, बट यू स्टे ट्यून्ड कॉज मेरे पास अभी भी बहुत सारे प्यारे प्यारे गाने हैं इन माय गानों का पिटारा. फॉर नाउ एंजॉय दिस लवली ट्रैक फ्रॉम द मूवी दो रास्ते.

0: सेट को फूड कंटेनर्स टोटल सेटिस्फेक्शन।
1: रेडिंग तैयार हो जाइए, रेडिंग मेला आ रहा है पाम पार्क में 1st और 2nd अगस्त दोपहर 12 से शाम 7 बजे तक। इंजॉय कीजिए लाइव परफॉर्मेंसेज बाय हरभजन तलवार, मैस बोनाफाइड, मानक ई एंड सोना वालिया, प्लस लाइव सिंगिंग, डांस, शॉपिंग, टेस्टी फूड, फन फेयर, ढोल और डीजे। एंट्री बिल्कुल फ्री। मोर डिटेल्स के लिए कॉल करें 07517801701। रेडिंग मेला पाम पार्क, वोकिंगहम रोड, रेडिंग, RG6 1LF। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो।
2: आपके सामने एक रेड बटन है,
3: दबा दिया।
2: नहीं दबाना था।
4: द मैडनेस इज बैक, धमाल 4।
5: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा।
4: स्टारिंग अजय देवगन, अर्शद वारसी, रितेश देशमुख एंड जावेद जाफरी। रिटर्न इन धमाल 4, डायरेक्टेड बाय इंदिरा कुमार।
6: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी।
4: Watch the biggest family entertainer, Dhamaal 4, in cinemas now.
7: पता नहीं ऐसे dangerous situations में मैं automatically आगे कैसे आ जाता।

0: Disha Rice now available at Asian grocery stores nationwide. Available at Sony Cash and Carries, Singsbury's, Kacha Bazaar, Samir Bazaar, More Foods, Sira South Hall, Dagenham Supermarket, all exotic stores in Reading and Slough, and Pick and Save, Canton Road. Disha Rice, come down and taste the difference.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
2: साउथ हॉल ट्रेवल Total protected.
3: At Breast Cancer Now, we know checking your breasts can feel daunting. But it's as simple as DLC. Touch, look, check. Touch your breasts, look for any changes, check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer, so it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/DLC.
4: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
5: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
4: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
5: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
4: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
5: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
6: Like a Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB digital radio par. Alexa pe bolo play Like a Gold aur online suno likeagold.com pe.
7: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: जब प्यार किया तो डरना क्या, दिस एवरग्रीन सॉन्ग इन द वोकल्स ऑफ लता मंगेशकर फ्रॉम द मूवी, द सुपरहिट मूवी मुगले आजम. एंड ऑफ कोर्स दिस वाज पेन डाउन बाय आर आर्टिस्ट ऑफ द वीक शकील बदयानी. एंड शकील साहब एक्चुअली एक वेरी फेमस उर्दू पोएट, लिरिसिस्ट एंड सॉन्ग राइटर हैं. क्या लिरिक्स होती हैं इनकी, व्हाट ब्यूटीफुल सॉन्ग्स.
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: Another mast wala gana in the vocals of Shailendra Singh and Asha Bhosle from the hilarious movie Rafu Chakkar.

0: हाय मुझे बड़ा मजा आता है, यू नो आई लव व्हेन आशा भोसले सेज नहीं नहीं नहीं नहीं, यू नो दिस लिटिल मस्ती इन अ वॉइस. जब आप ये गाना सुनते हैं इट जस्ट मेक्स यू सो हैप्पी. इट्स सच अ लवली एवरग्रीन सॉन्ग फ्रॉम द मूवी हम दोनों, इन द वोकल्स ऑफ कोर्स आशा भोसले एंड द लेजेंड रफी साहब. देवानंद ऑफ कोर्स वाज सो सो सो नाइस एंड रोमांटिक इन दिस सॉन्ग.
1: ये है Laika Gold. Dreaming of paradise?
2: Discover the Indian Ocean with Skylord Cruise and Holidays. Book exclusive Emirates holiday offers to Mauritius, the Maldives, Seychelles and Sri Lanka.
1: Choose from luxury beach escapes, family resorts and incredible multi-center holidays, all at exclusive prices.
2: Call Skylord Cruise and Holidays today on 01923883100. That's 01923883100.
1: At all protected.
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
4: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
3: High appreciation.
4: In Dubai.
5: The Bhajan Clubbing Hype lands in London this October as Backstage Siblings take the stage for their first ever UK performance. Experience the pioneers of Bhajan Jamming live on Friday 9th and Saturday 10th October at SKLPC UK Northolt. Two nights you won't forget. Tickets are moving fast. Book now at sklpc.com/BSS. Exclusive radio partners Laika Radio Network.
6: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhujar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamari Ram.
7: Book your tickets now on eventimapollo.co.uk and use code HamariRam10 for a 10% discount on all shows and tickets.
6: Exclusive radio partner Like रेडियो.
8: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com. टीज एंड सीज अप्लाई.
9: यार कभी कभी अपने देश के छोले भटूरे, राज कचोरी और मिठाइयों की बहुत याद आती है.
10: तो फिर इंतजार क्यों? हॉन्सलो एंड साउथ हॉल के बाद अब बीकानेर वाला आ गया है गैंसिल इलफोर्ड में.
9: सच?
10: बिल्कुल, देश का असली स्वाद, लाजवाब मिठाइयाँ और अपनेपन की खुशबू सब एक ही जगह.
11: आज ही विजिट करें बीकानेर वाला 513-519 क्रैनबुक रोड, गैंसिल इलफोर्ड, IG2 6HA. कॉल करें 07555-506-015. बीकानेर वाला, टेस्ट ऑफ इंडिया नाउ इन इलफोर्ड.
9: आ सितंबर पेरिस मा इतिहास लखाई रह्यो छे.
12: BAPS मंदिर नो ओपनिंग अने स्टार टूर्स तमने लई जई रह्यो छे आ पवित्र यात्रा पर.
9: यूरोप ना 3-9 दिवस ना टूर्स,
12: फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली अने जर्मनी साथे
9: दर्शन पण अने यूरोप पण.
12: सीट्स जल्दी भराई रही छे, आज ज बुक करो स्टार टूर साथे.
9: कॉल 02089002323 द स्टार टूर्स.
12: ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन.
6: अप नेक्स्ट रितु शर्मा विद द रितु शर्मा शो ऑन लाइक अ गोल्ड.
13: हेलो हेलो हेलो, वेक अप विद मी काजल ऑन The Breakfast Show, where I take you down memory lane, get inspired by Morning Mantra, Monday to Friday, 6 a.m. to 10 a.m., Laika Gold and Laika Radio Midlands.

भूल गया सब कुछ, दिस प्यारा वाला गाना इन द वोकल्स ऑफ किशोर दा एंड लता मंगेशकर फ्रॉम द मूवी जूली. एंड इस गाने के बाद वक्त हो चुका है फॉर मी टू से बाय, बट गिव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू रितु शर्मा. अप नेक्स्ट, लाइक अ रेडियो नेटवर्क.

0: और इस गाने में धर्मेंद्र बिल्कुल जट यमले पगले दीवाने ही लग रहे थे, और ये दीवानगी मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में भी दिख रही थी जिन्होंने इस गाने को गाया है। और क्या म्यूज़िक तैयार किया है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने, एक सदाबहार गाना, और उससे पहले आरडी बर्मन की आवाज़। शोले फिल्म का गीत आपने सुना, और इन दो गीतों के साथ लीजिए एक बार फिर से आज के द ऋतु शर्मा शो की शुरुआत हो गई है। और मैं ऋतु शर्मा आप सभी को कहना चाहती हूँ गुड मॉर्निंग, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम। सैटरडे का दिन है और लीजिए शो की शुरुआत हो गई है, और उम्मीद है आप सब बिल्कुल मज़े में हैं, बहुत ही अच्छे हैं, वैसे ही खूबसूरत हैं, वैसे ही प्यारे हैं, वैसे ही खुश हैं जैसे हमेशा इस शो को सुनकर होते हैं और मेरा साथ भी दे रहे हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और बस आप हमारा साथ देते रहिए, हम यूं ही गीतों का सिलसिला आगे बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू सो मच ढेर सारे मैसेजेस भिजवाने के लिए, मेरे आने से पहले उन पर भी मेरी नजर जाएगी, लेकिन फिलहाल
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 आज आपको देगा 127.2 भारतीय रुपए, लेकिन याद रखिए ये ट्रांसफर करवाना होगा आपको ब्रांच में जाकर ऑनलाइन या फिर उनके योनो SBI UK मोबाइल ऐप के थ्रू। टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit SBIUK.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Leica Gold.
3: Leica Gold.
4: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probate, and for other legal requirements.
0: तो भाई मैं जानती हूँ आप सबने रात में जागने की तैयारी कर ली है, क्योंकि 10 बजे से आज इंग्लैंड और नॉर्वे के बीच में क्वार्टर फाइनल्स खेले जाने वाला है और सबकी नजरें उसी मैच पर टिकी हुई हैं। देखते हैं मैन कौन जीतता है, लेकिन आपको बताते चलें कि आप अपना 15 मिनट्स की फ्री लीगल एडवाइस लेना बिल्कुल मत भूलिए हमारे स्पॉन्सर्स रैक लॉ से, और ये सब हो सकता है जब आप मेंशन करेंगे लाइका।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
2: Lyca Gold.

0: लो, थोड़ा सा जिलो थोड़ा थोड़ा मर लो।
1: दुनिया में आए हो तो लव कर लो, दुनिया में आए हो तो लव कर लो, थोड़ा सा जिलो थोड़ा।

0: जी लो थोड़ा थोड़ा मर लो,
1: हाँ थोड़ा सा जी लो थोड़ा थोड़ा मर लो।
0: भाई दुनिया में आए हो तो लव कर लो, थोड़ा सा नहीं खूब जी लो, और सिर्फ लव ही करो, नफरत नहीं करो। क्योंकि कल मैं हमारे राम शो देखने गई थी जो बहुत ही कमाल का था, और मैं ज़रूर आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। लेकिन आशुतोष राणा ने भी एंड में एक बहुत ही खूबसूरत लाइन कही थी जब वो लक्ष्मण को ज्ञान दे रहे थे कि हम जिनसे नफरत करते हैं तो हम भी उनके जैसे ही हो जाते हैं, क्योंकि हमारे जहन में वो ही इंसान दिन भर घूमता रहता है। इसलिए उन्हें अपने मन से माफ़ कर दो, चाहे आप उनसे बात करो या ना करो, लेकिन अपने दिमाग से उनको निकाल दो, क्योंकि वो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप हर वक्त उनके बारे में सोचें। दुनिया में और भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं सोचने के लिए, समझने के लिए। तो इतनी खूबसूरत बातें कल मैंने उस शो में सुनी, मैं ज़रूर अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी, फिर कहती हूँ थोड़ी ही देर बाद। लेकिन उससे पहले हमारे बहुत सारे प्यारे प्यारे लिसनर्स साथ देने के लिए जुड़ गए हैं, तो उनके दिल की बात जान ले।
2: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
3: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: ye hai
4: Like a Gold.
0: बिल्कुल सही सुना आपने, ये है लाइका रेडियो नेटवर्क, जहाँ पर रितु शर्मा आपके साथ है और आप सुन रहे हैं लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन, लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स। और आपको बता दें कि आप अगर 90s के 2000 के बहुत सारे गाने सुनना चाहते हैं तो हमारे लाइका रेडियो से इस वीकेंड पर थ्रोबैक वीकेंड किया जा रहा है, तो सुन के देखिए। अगर आपको 2000 के और 90s के गीत पसंद है तो आप वहाँ भी जाकर उसे भी सुन सकते हैं। लेकिन फिलहाल बात करते हैं हमारे लिसनर्स की, जिन्होंने मुझे बहुत सारे प्यार के साथ ढेर सारे मैसेजेस भिजवाए हैं। थैंक यू मनीषा शाह, आप कल देखने जा रही हैं? ओहो, ज़रूर जाइए, मैं आपका बिल्कुल भी एक्साइटमेंट कम नहीं करूँगी। मैं कुछ भी नहीं बताऊँगी शो के बारे में, लेकिन कुछ बातें बताऊँगी जो आपको वहाँ जाने के लिए और भी एक्साइट कर देंगी। तो आप ज़रूर देखकर आइए मनीषा शाह। जयंत एंड मीना जी हमारे साथ हैं, सनी सैटरडे मॉर्निंग में गर्मी का मजा लेते हुए शो का आनंद उठा रहे हैं, क्या बात है। स्लाव में सुरजीत हमारे साथ हैं, हैरो में दिव्या जी हैं, टोरंटो में हमारे साथ उल्लास हैं, अर्जुन जी हैं, रुदा जी हैं, हरीश रुदा हैं हमारे साथ, संध्या भावसर हैं, रोशनी है, एंड हमारे साथ हैं हमारे राजेश जी। थैंक यू, कहते हैं आपको बहुत ही खुशहाल और मज़ेदार शनिवार की शुभकामनाएं, क्या बात है। थैंक यू, थैंक यू क्रॉयडन से महेंद्र पटेल जी, थैंक यू बानी जी, आपने मुझे फालूदा का ग्लास भिजवा दिया है, क्या कर रही हैं, आपको कैसे पता कि फालूदा मेरा फेवरेट है। आइसक्रीम हो, फालूदा हो, मैंगो शेक हो, कुछ भी हो, मैं सब कुछ खा जाती हूँ, मुझे सब इतना पसंद है, मुझे मीठा इतना पसंद है कि मैं क्या बताऊँ। तृप्ति आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिसेस शेख हिमांशु पटेल जी, थैंक यू। प्रज्ञा कहती हैं कहाँ थी आप, ज़माने के बाद आई हैं। सच में प्रज्ञा, एक हफ्ते के बाद आई हूँ ना, तो मुझे भी ऐसे लग रहा है कि मैं आप लोगों से कितने दिनों बाद मिल रही हूँ। ओहो, ऐसे गाना याद आ रहा है, लंबी जुदाई, ना ना मैं गाऊंगी नहीं, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है। तो थैंक यू हरीश खत्री जी, आंटी जी, सहर जी, अनिल सोनी जी, वियाना से तोची जी, मृदु जी, शेखर जी, एंड ऑफ कोर्स हमारी मालती जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके मैसेजेस मिल गए हैं, और जब मिल ही गए हैं तो अगला गाना क्यों ना आप सबके नाम किया जाए।
2: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: लता जी और अमित कुमार की आवाजों में लव स्टोरी फिल्म से था ये गाना, जो विजेता पंडित और कुमार गौरव की फिल्म थी। और आपको बता दें कि कुमार गौरव, जिनका असली नाम मनोज तुली है, आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं और आज वो 70 इयर्स के हो गए हैं। यस, कुछ बहुत ही अच्छी फिल्मों का हिस्सा रहे हैं और उनके पापा ने ये फिल्म उन्हें लॉन्च करने के लिए बनाई थी। और हाँ, एक और बात बता दूँ, उनके पापा कौन है आप जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो जान जाएंगे, क्योंकि आज हम यादें में उन्हीं को याद करने वाले हैं। तो ज़रा बताइए कि कुमार गौरव के फादर का नाम क्या है, उनके बारे में होंगी बातें आज की यादें में प्रोग्राम के अगले हिस्से में।
1: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
2: ये है Like a Gold.
3: Ritu Sharma live on Like a Gold Greater London.
0: जी हाँ, बिल्कुल, आप लाइव शो ही सुन रहे हैं मेरे रितु शर्मा के साथ और आपके मैसेजेस लगातार मिलते जा रहे हैं। तो कुमार गौरव को हैप्पी बर्थडे कहते हुए आपको भी हैप्पी बर्थडे कह देते हैं अगर आज आपका जन्मदिन है, और अगला गीत आपको डेडिकेट कर देते हैं। लेकिन उससे पहले सुनील कपूर जी, आपने पोहे की फोटो भेजी है और कह रहे हैं खाइए। अरे भाई, पोहा थोड़ी नहीं भेजा है, कैसे खा लूँ? फोटो भेजिए तो लिखिए देखिए, मैं देख रही हूँ और बहुत मुंह में पानी भी आ रहा है, लेकिन क्या किया जा सकता है, आप खाइए मजे के साथ और हमारे शो में बजने वाले गीतों को एंजॉय कीजिए। लेकिन मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि कल मैं बहुत लकी रही, मुझे हमारे राम देखने का मौका मिला और मैं यही कहूँगी कि व्हाट एन अमेजिंग शो, हर चीज़ इतनी खूबसूरती से दिखाई है, हर एक्टर ने अपने किरदार में ऐसी जान डाली है कि आप उसमें खो जाते हैं। स्टेज पर क्या जादू क्रिएट किया है, स्क्रीन से, लाइट से, अपनी बोली से, अपनी भाषा से, अपने भाव भाव से इतनी खूबसूरती से सब दिखाया है। चाहे वो राम हो जो राहुल भुच्चर बने हैं, चाहे वो महादेव हो जो तरुण खन्ना बने हैं, या फिर हो रावण जो है आशुतोष राणा, हर कैरेक्टर को देखकर मुझे इतना मज़ा आया। हाँ, कुछ लोगों को शायद भाषा समझने की प्रॉब्लम हो रही हो क्योंकि वो हिंदी भाषा में है, लेकिन रामायण की कथा तो हम सब जानते ही हैं और अगर एक दो शब्द नहीं भी समझ में आए तो कोई मुश्किल मुझे नहीं लगती होती है, क्योंकि आप उसको जब देखते हैं सामने आँखों से तो वो सब कुछ आप फील करते हैं, समझ जाते हैं कि वो किरदार क्या कहना चाह रहे हैं। एक अनोखा एक्सपीरियंस था, मैंने बहुत सारे शो देखे हैं लेकिन ये कहूँगी कि ऐसा पहले कभी नहीं देखा। और कभी कभार जब वो लोग डायलॉग्स बोल रहे थे तो मेरे रोंगटे भी खड़े हो रहे थे, मैं उसमें खो गई थी और बहुत अच्छा लगा। किरदार जो थे वो सिर्फ स्टेज पर परफॉर्म नहीं कर रहे थे, वो आप सबके बीच में खड़े होकर परफॉर्म कर रहे थे, ये भी बहुत अमेजिंग बात थी। तो जो लोग गए होंगे वो समझ पा रहे होंगे कि जब आपके पास में से राम निकलते हैं, जब आपके बीच में से हनुमान निकलते हैं तो कैसा लगता है। बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस था। और जो नहीं गए हैं, जो सोच रहे हैं कि हम जाएँ या ना जाएँ, तो मैं कहूँगी ज़रूर जाइए, ऐसा एक्सपीरियंस आपने पहले कभी अनुभव नहीं किया होगा। नहीं जाएंगे तो पछताएंगे, मैं तो बहुत खुश हूँ जाके, मुझे मौका मिलेगा तो मैं दोबारा भी देख सकती हूँ। सो आई रियली एंजॉयड इट। और बस यही कहूँगी कि उनके लिए मेरी ओर से ढेर सारी तालियाँ, क्योंकि मैं कुछ और दे नहीं सकती। सो इट वॉज एन अमेजिंग अमेजिंग शो। और जो कल जा रहे हैं, यकीन मानिए आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है।
3: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: लेकिन उससे पहले हमको बता दें कि आप हमारे राम तो देखने जा रहे हैं, लेकिन अगर घूमने जाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी डील्स लेकर आए हैं साउथहॉल ट्रैवल दुबई के लिए। आप उन्हें फ़ोन कीजिए 02085748410 पर, ये सब है टॉल प्रोटेक्टेड है, और अपने टिकट्स बुक कीजिए।
3: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
4: I heard you. A red light becomes a moment to breathe. A coffee run, a kick of momentum. A wrong turn turns into an adventure, while a song becomes your soundtrack. From the driver's seat of an LBX, even the most ordinary of days can feel that little bit extra. The award-winning Lexus LBX self-charging hybrid. Find the extraordinary in the everyday.
3: This is Ritu Sharma.
5: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com.
6: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
5: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
6: विजिट travelhubworld.com.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
7: High appreciation.
8: In Dubai.
9: Kajal's Couture. For every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
10: Discover Kajal's Couture Southall. The grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall. UB1 1LR.
9: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
10: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
9: Kajal's Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
10: Visit kajalscouture.co.uk.
11: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
12: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share and we give the rest back to you as cashback.
11: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
12: Call 0208-706-0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208-706-0915, or visit cashbackremortgages.co.uk.
11: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
13: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
14: भाइयों बहनों, खुशखबरी, 1905 से असली स्वाद बीकानेर वाला अब इल्फर्ड में. India's famous chole bhature, a match made in heaven. Family ko lao, flavors of India ka maza lo. Mile 513-519 Cranbrook Road, Gansu, Ilford, IG2-6HA. Bikaner wala, now in Ilford.
15: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
16: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
15: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
16: And you didn't pay those massive roaming charges?
15: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
17: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100+ countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
18: SonaTours.co.uk Japan Cherry Blossom Tour in March and April 2027. Book before the end of July and get up to 400 off. Call SonaTours on 0208-951-0111.
19: At Breast Cancer Now, we know checking your breasts can feel daunting. But it's as simple as DLC. Dutch, look, check. Dutch your breasts, look for any changes, check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer, so it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/DLC.
3: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
20: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk.
21: Hi, मैं हूँ अश्विनी. हर शाम 7 से 10 बजे तक सुनिए मुझे लाइका गोल्ड रेडियो लंदन एंड ग्रेटर मैनचेस्टर इन द इवनिंग शो विद अश्विनी. फीचर्स बड़े ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग आप सभी के लिए.

0: योगेंद्र जैन जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। क्या संगीत है, क्या लता जी की आवाज है, क्या गाना है। प्रेम रोग फिल्म से लिया था ये गाना। चलिए आपको डेडिकेट करते हैं। और साथ ही साथ हमारे साथी हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। थैंक यू गिरी जी, भारत में आप हैं, पूछ रहे हैं मैं कैसी हूँ। मैं बहुत अच्छी हूँ और आप सबसे मिलने के बाद मैं और अच्छी हो जाती हूँ। और बहुत सारे साथियों ने कहा है कि आप राजेंद्र कुमार के बारे में बात कर रही हैं। जी कोकिला पटेल जी बिल्कुल, हरीश खत्री जी बिल्कुल, राजकुमार जी, संतोष जी, तृप्ति जी, मैं बिल्कुल बात कर रही हूँ जुबली कुमार, राजेंद्र कुमार के बारे में, जिन्हें हम याद करेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में। लेकिन उससे पहले एक मैसेज जरूर पढ़ूंगी। राजेश जी कहते हैं कि राम के शो पर आपके अनुभव और आनंद पर आपके ईमानदार विचारों की सराहना की जाती है। तो मैंने बिल्कुल ईमानदारी से बताया है, जो फील किया है मैं वही बता रही हूँ, और मुझे ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। आपको बता दूँ, मैं कुमार विश्वास की राम कथा भी बहुत सुनती हूँ। आप शायद यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन मुझे वो बहुत अच्छी लगती है सुनकर, क्योंकि दुनिया में कहते हैं ना, इतने गम हैं और स्ट्रेस है, इतने लोग आपको कई बार परेशान करते हैं, लाइफ में बहुत सारी परेशानियां होती हैं और हम उन परेशानियों में खो जाते हैं। लेकिन जब मैं ये सब चीज़ें सुनती हूँ ना, तो मुझे एहसास होता है कि क्या फालतू की चीज़ में मैं अपना दिमाग ख़राब कर रही थी, भाड़ में जान दो, इसके बारे में सोचना ही नहीं। इतना सुंदर भगवान ने जीवन दिया है और बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं सोचने के लिए, इन सब के बारे में सोच के अपना जीवन क्यों व्यर्थ में वेस्ट करना। और ये सब समझ तभी आता है जब मैं इस तरह की बातें सुनती हूँ। तो कल भी मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगा और मुझे अच्छा लगता है ये सब सुनकर। तो अगर आपको भी इस तरह का चीज़ें पसंद है तो हमारे राम देखने ज़रूर जाइए। और मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, अगर मैं बताऊँ तो सारा शो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन क्या करूँ, आपको गाने भी तो सुनवाने हैं ना।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो £1 आज आपको देगा 128 भारतीय रुपए, 372 पाकिस्तानी रुपए एंड 165 बांग्लादेशी टकास।
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: LEICA Gold.
1: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: So gold rate is £98.8 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley. Tune in to Leica Gold, London's number one Asian retro station on the Leica Radio mobile app.
3: Ye hai Leica Gold, 10:35 AM.
4: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
5: Southall Travel, 7 days a week. Southall Travel, 24 hours a day.
6: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
7: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
5: Southall Travel can take you there.
8: Southall Travel, at all protected.
9: Start

0: क्या गाना है रफी साहब की आवाज में, धरती फिल्म से पिक्चर आइज ऑन राजेंद्र कुमार, और उससे पहले किशोर दा की आवाज में आप आए बाहर आई। और आई थिंक ये एक ऐसा इकलौता गाना था किशोर दा की आवाज में जो राजेंद्र कुमार के ऊपर पिक्चराइज किया गया था। और आज की यादें में हम राजेंद्र कुमार को ही याद कर रहे हैं जिन्हें फिल्म इंडस्ट्री में जुबली कुमार के नाम से जाना जाता था उस जमाने में। और वो इसलिए क्योंकि उनकी फिल्में लगातार ब्लॉकबस्टर होती थी। 60s के दौर में उनका सिक्का ऐसा चलता था कि थिएटर्स में उनकी फिल्में हफ्तों महीनों नहीं बल्कि सालों चला करती थी। एक बार लग जाए तो फिल्म उतरने का नाम ही नहीं लेती थी। ऐसे हीरो रहे हैं राजेंद्र कुमार, और इसलिए इनके हिस्से में बहुत सारी फिल्में हैं जिनमें बहुत खूबसूरत गाने हैं। तो आज कुछ गाने मैंने चुने हैं जिन्हें मैं आज आपको सुनवाऊंगी, लेकिन कुछ बातें ज़रूर उनके बारे में बताऊंगी कि राजेंद्र कुमार के दिल में बचपन से ही सपना था कि वो एक एक्टर बने। हालांकि घर पे फादर का बिजनेस था, लेकिन उसे छोड़कर 50 रुपए लेकर मुंबई भाग आए और उन्हें पहला ब्रेक दिया के आसिफ ने। उनके साथ उन्होंने एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। जोगन फिल्म में दिलीप कुमार के साथ इन्हें छोटा सा रोल भी मिला, और इस रोल को करके राजेंद्र कुमार को जैसे चस्का लग गया। पहले तो वो डायरेक्टर ही बनना चाहते थे, लेकिन जब वो छोटा सा रोल किया तो राजेंद्र कुमार को बहुत मज़ा आया और उन्हें लगा कि अब तो शायद मैं हीरो ही बनूंगा। और उसके बाद उनकी फिल्म आई मदर इंडिया। मदर इंडिया में नरगिस के बेटे रामू का जो उन्होंने किरदार निभाया, रातों रात उन्हें लोगों ने बहुत पसंद किया, रातों रात स्टार बना दिया, खूब पहचान मिली। और उसके बाद तो एक के बाद एक इनकी बहुत सारी फिल्में आईं जो सुपरहिट होती गईं। कई फिल्में हैं, लेकिन जिनमें से एक फिल्म है दिल एक मंदिर, जो आप सबके दिल के बहुत करीब है। अगला गीत उसी फिल्म से आपको सुनवाने वाली हूँ।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दें कि आज ये £1 के बदले में आपको मिल जाएंगे 127.2 भारतीय रुपए। और याद रखिए, ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा via SBI branch online or by using the Yono SBI UK mobile app. Terms and conditions do apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates and for other legal requirements.
0: तो चलिए आपको एक बार याद दिला दें कि आज फीफा वर्ल्ड कप 2026 में नॉर्वे और इंग्लैंड के बीच में क्वार्टर फाइनल्स का मैच है जो रात को 10 बजे से शुरू होगा। और इसके साथ ही आपको 15 मिनट्स की फ्री लीगल एडवाइस भी मिल सकती है विद अवर स्पॉन्सर्स रैक लॉ इफ यू मेंशन लाइका।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: Okay, Nico, got some traffic up ahead, so let's box, box, box into BP to view it up and grab a coffee.
4: Even F1 drivers like Nico Hülkenberg do everyday driving. That's why the Audi Revolut F1 team recommends BP Ultimate with active technology.
3: Grab us a sausage roll while you're in there. Nico? Hello?
4: Choose BP Ultimate for up to 375 more miles per year. Distance may vary due to factors like driving style, vehicle, load and weather. Based on continuous 6,400 miles per year use. See bp.com/ultimate.
5: This is Leica Gold.

दिल एक मंदिर फिल्म से था ये गाना। शंकर जय किशन का म्यूजिक, राजेंद्र कुमार, मीना कुमारी और राजकुमार की फिल्म। और इस फिल्म के लिए राजेंद्र कुमार को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर का अवार्ड भी मिला था। और ये फिल्म 1963 में आई थी। और 60s का दौर राजेंद्र कुमार के जीवन का ऐसा दौर था कि उनकी एक के बाद एक फिल्में हिट होती जा रही थीं। और 60s में ही एक समय ऐसा आया जब एक साथ राजेंद्र कुमार की 6 से 7 फिल्में चल रही थीं और सभी फिल्में 25 हफ्ते का आंकड़ा पार कर चुकी थी, यानी कि सिल्वर जुबली हिट हो चुकी थी। और इसीलिए जहां भी देखो सिर्फ और सिर्फ राजेंद्र कुमार की फिल्मों के पोस्टर्स ही नजर आते थे और इसीलिए उन्हें जुबली कुमार का नाम दिया गया। एक और बहुत ही खूबसूरत सा गीत है सुनवाने वाली हूँ, क्योंकि आज हम यादें में राजेंद्र कुमार को ही तो याद कर रहे हैं। Feel good track brought to you by Dairy Valley. Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com. Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma.

0: گستاخی ماں گستاخی ماں.
1: اپنے زمانے کی سپر ہٹ فلم سورج سے لیا تھا یہ گانا جو 1966 میں آئی تھی, شنکر جے کشن کا شاندار میوزک اینڈ راجندر کمار ویجنتی مالا کی فلم. राजेंद्र कुमार की लाइफ के बहुत सारे किस्से बहुत मशहूर हैं, लेकिन एक उनके बंगले वाला किस्सा जिसके बारे में हर कोई बात करता है कि जब राजेंद्र कुमार अपने शुरुआती स्टारडम के दिनों में उन्होंने बांद्रा पर समंदर के सामने एक भूतिया माना जाने वाला बंगला खरीदा था और उन्होंने इसका नाम अपनी बेटी के नाम पर डिम्पल रखा था, और इस घर में कदम रखते साथ ही उनकी किस्मत ऐसी चमकी कि वो जुबली कुमार बन गए. लेकिन बाद में जब राजेंद्र कुमार का दौर धीमा पड़ा, उन्हें पैसों की जरूरत पड़ी और उस समय उन्होंने उस बंगले को बेचने का फैसला किया, तो उस समय के उभरते हुए कलाकार जो उस समय तक सुपरस्टार नहीं बने थे, राजेश खन्ना, उन्होंने उस बंगले को खरीदा. उसका नाम बदलकर उन्होंने डिम्पल से आशीर्वाद किया और इस बंगले में शिफ्ट होते ही राजेश खन्ना ने लगातार 15 ब्लॉकबस्टर फिल्म्स दी और वो देश के पहले सुपरस्टार बन गए. अब क्या कहते हैं आप, ये कमाल इन दोनों एक्टर्स की एक्टिंग का था या फिर उस भूतिए बंगले का?
2: रिचि शर्मा ऑन लाइक ए गोल्ड.
3: नमस्कार, रवि शर्मा रोज आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ. मंडे टू फ्राइडे जुड़िएगा मेरे साथ 10 से 1 बजे के बीच. मंडे टू फ्राइडे मनोरंजन विद रवि शर्मा.
2: लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अपडेट.
1: तो याद दिला दें आपको कि लाइका एक्स्ट्रा का नया एपिसोड आ गया है, पॉडकास्ट का नया एपिसोड आ गया है और इसका टाइटल है ईस्ट अफ्रीकन एशियंस. लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट आप सुन सकते हैं सभी लीडिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो हैं Spotify, YouTube, Amazon, जहां भी आपको सुविधा हो वहां जाकर सुनिए लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट.
2: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर. गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव.
4: Okay, Nico, got some traffic up ahead, so let's box, box, box into BP to view it up and grab a coffee.
5: Even F1 drivers like Nico Hülkenberg do everyday driving. That's why the Audi Revolut F1 team recommends BP Ultimate with active technology.
4: Grab us a sausage roll while you're in there. Nico? Hello?
5: Choose BP Ultimate for up to 375 more miles per year. Distance may vary due to factors like driving style, vehicle load and weather. Based on continuous 6,400 miles per year use. See bp.com/ultimate.
6: Yeah, like a gold.
3: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com.
7: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
8: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
7: विजिट travelhubworld.com.
3: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है. शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए. गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है. जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी. आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर kfurniture.co.uk पर जाएं.
9: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.60% on non-withdrawable fixed deposits.
10: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
11: चावल हो बेस्ट, सब करे टेस्ट, दिशा राइस का है जमाना. दिशा बासमती राइस.
12: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड. अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरीज, सिंग्सबरीज, कच्चा बाजार, समीर बाजार, मोर फूड्स, सीरा साउथ हॉल, डेगनम सुपरमार्केट, ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाव एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड. दिशा राइस, कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस.
8: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
13: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
8: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
13: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
8: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
13: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
14: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply।
15: राइस खरीदने का परफेक्ट टाइम आ गया है। बाय 20 kg टिल्डा बासमती राइस एंड गेट 1.5 kg Gulab Kenyan Tea absolutely free. Mix and match Tilda Basmati packs to make up to 20 kgs. Yani ke 4 times 5 kg, ya 2 times 10 kg, ya 1 times 20 kg. This special offer is available at all quality food stores. Hurry, offer ends while stocks last. Quality foods, quality or value, dono ek saath.
2: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. The sun is out, and so are the summer hits on Leica Gold.

0: अपने जगाए, नन्हा सा दिल मेरा मचल मचल जाए।
1: वही नन्हा सा दिल माला सिन्हा का था, जिसमें साथ में थे राजेंद्र कुमार और ये थी फिल्म धूल का फूल, जो एक सुपर डुपर हिट फिल्म थी राजेंद्र कुमार की, और आज हम उन्हें ही यादें में याद कर रहे हैं। अपने ज़माने की सारी सुपरस्टार एक्ट्रेसेस के साथ राजेंद्र कुमार ने बहुत बड़ी बड़ी हिट फिल्म्स दी हैं, क्योंकि खुद ही एक बहुत बड़े हीरो थे। लेकिन जानते हैं आप, फिल्म इंडस्ट्री में राज कपूर और राजेंद्र कुमार एक बहुत गहरे और पक्के दोस्त थे। आपने सुना होगा वो किस्सा कि जब राजेंद्र कुमार और राज कपूर दोनों एक साथ नजर आए थे फिल्म संगम में। दरअसल जब राज कपूर ने संगम फिल्म बनाने के बारे में सोचा, तो मेन लीड रोल में तो उन्होंने खुद को लिया, और सेकंड लीड के लिए वो दिलीप कुमार को लेना चाहते थे। उन्हें लगता था कि सेकंड लीड भी कोई बहुत बड़ा हीरो करे, लेकिन दिलीप साहब ने उस फिल्म में काम करने से मना कर दिया, क्योंकि वो सेकंड लीड था। और उन्होंने दो चार हीरो से और पूछा, लेकिन सब ने मना कर दिया। और राज कपूर राजेंद्र कुमार से नहीं पूछना चाहते थे, क्योंकि राजेंद्र कुमार उस समय टॉप में चल रहे थे। लेकिन जब राजेंद्र कुमार को पता चला कि उनका दोस्त कुछ परेशान है, उन्होंने उससे पूछा क्या बात है। राज कपूर कहते अरे रहने दे, बोले नहीं कहो तो क्या बात है। और जब उन्होंने अपनी दुविधा राजेंद्र कुमार को बताई, तो वो बोले बस इतनी सी बात, मैं करूंगा तेरी फिल्म में। राज कपूर दंग रह गए, बोले इतना बड़ा हीरो मेरी फिल्म में सेकंड लीड करेगा। राजेंद्र कुमार बोले तो क्या हुआ, दोस्त के लिए मैं इतना नहीं कर सकता। और उन्होंने इस फिल्म में सेकंड लीड रोल निभाया, जिसमें एंड में उनकी डेथ भी हो जाती है और हीरोइन हीरो के साथ चली जाती है। लेकिन इस फिल्म में भी राजेंद्र कुमार के उस रोल को इतना पसंद किया गया, ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुई, सारे रिकॉर्ड टूट गए। और इस फिल्म के बाद राज कपूर और राजेंद्र कुमार की दोस्ती और भी ज़्यादा गहरी हो गई। और बाद में राज कपूर ने अपनी बेटी रीमा की शादी उनके बेटे कुमार गौरव से भी तय की थी, जो किसी वजह से नहीं हो पाई। लेकिन ये दोस्ती आज भी फिल्मी गलियारों में, बॉलीवुड के किस्सों में, कहानियों में हमेशा याद की जाती है।
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: तो आज 1 पाउंड आपको देगा 128 भारतीय रुपए, 372 पाकिस्तानी रुपए एंड 165 बांग्लादेशी टकास।
3: Leica Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
4: Leica Gold.
2: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: So Gold Rate is 98.82 pounds per gram.
2: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley. Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma.
5: Leica Gold.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 02 03963 5757. Greens by Danu. Prime location.
6: High appreciation.
7: In Dubai.
8: Packed for the trip? Gifts? Passport?
9: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
8: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
9: Simzy?
8: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
10: Plans for Asia, Europe and beyond. Search simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
4: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
5: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
4: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
5: गारंटेड
4: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे।
11: साउथ हॉल ट्रेवल
5: 0208574 8410।
11: 2400 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
12: आपके सामने एक रेड बटन है,
13: दबा दिया।
12: नहीं दबाना था।
14: द मैडनेस इज बैक, धमाल 4।
15: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा।
14: स्टारिंग अजय देवगन, अर्शद वारसी, रितेश देशमुख एंड जावेद जाफरी। रिटर्न इन धमाल 4, डायरेक्टेड बाय इंदिरा कुमार।
16: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी।
14: वॉच द बिगेस्ट फैमिली एंटरटेनर धमाल 4 इन सिनेमाज नाउ।
17: पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता।
18: यार कभी कभी अपने देश के छोले भटूरे, राजकचोरी और मिठाइयों की बहुत याद आती है।
19: तो फिर इंतजार क्यों? हॉन्स्लो एंड साउथ हॉल के बाद अब बीकानेर वाला आ गया है गैंसिल इलफोर्ड में।
18: सच?
19: बिल्कुल, देश का असली स्वाद, लाजवाब मिठाइयाँ और अपनेपन की खुशबू सब एक ही जगह।
20: आज ही विजिट करें बीकानेर वाला 513-519 क्रैनबुक रोड, गैंसिल इलफोर्ड, IG2 6HA। कॉल करें 0755-506-015। बीकानेर वाला, टेस्ट ऑफ इंडिया नाउ इन Ilford.
21: Kajal's Couture, for every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
22: Discover Kajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
21: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
22: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
21: Kajal's Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
22: Visit kajalscouture.co.uk.
23: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad ab pehli baar London mein dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhujar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamari Ram.
24: Book your tickets now on eventimapollo.co.uk and use code Hamari Ram 10 for a 10% discount on all shows and tickets.
23: Exclusive radio partner Leica Radio.
25: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
26: The Ritu Sharma Show with Ritu Sharma on Leica Gold, Greater London. Ta-da.

रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में था ये गाना, और आज हमने राजेंद्र कुमार को याद किया यादें में। आज कुछ अलग गाने सुनवाए मैंने आपको, आई एम श्योर आपने पसंद किए होंगे। और राजेंद्र कुमार एक ऐसे कलाकार रहे हैं जिन्हें उनके योगदान के लिए 1969 में भारतीय सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्हें कई बार फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया, कई बार उन्हें अवार्ड भी मिले, लेकिन वो आखिर में दुनिया से चले गए, कैंसर से पीड़ित रहे। और 12 जुलाई जो कल है 99 में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन बहुत ही कमाल के एक्टर रहे हैं, कमाल की फिल्में हैं, कमाल के गाने हैं। ऐसा ही एक और गीत जो होगा आज की यादें का आखिरी गाना।

0: Win-win. Sorted automatically by us. Price cap? Taken care of. Fix your prices today. Search British Gas Fix and Fall. T's and C's eligibility and limitations apply. Price review based on the Ofgem price cap after 12 months. See britishgas.co.uk/verify for more.
1: Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
2: Good afternoon. आइए बात कर लेते हैं आज के मौसम की. और आज लंदन में, मैनचेस्टर में, मिडलैंड्स में सभी जगह अच्छी खासी सनशाइन है और टेम्परेचर 30 डिग्रीज के आसपास ही रहने वाला है.
1: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410.
3: Ye hai. Like a gold. Ritu
2: Sharma. यस, सही सुना आपने. शो में मैं ऋतु शर्मा हूँ आपके साथ दोपहर के एक बजे तक. और ये है प्रोग्राम का लास्ट एंड फाइनल आवर जिसमें हम खेलते हैं थ्री वर्स गेम और मैं सुनवाती हूँ आपको कुछ ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक्स भी. यस, सब कुछ होगा लेकिन पहले बजेंगे दो गाने बैक टू बैक.
4: लाइका गोल्ड. Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
5: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
6: Travel Hub.
5: At all protected.
4: Leica. Ritu Sharma live on Leica Gold, Greater London.

0: लीजिए अमित कुमार और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में था ये गाना फिल्म चालबाज से, और उससे पहले आपने लता जी के साथ सुनी अमित कुमार की आवाज। फिल्म का नाम रोमांस, जिसमें कुमार गौरव और पूनम ढिल्लन ने काम किया था। और एक बार फिर से याद दिला दें कि आज कुमार गौरव अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और उनके साथ साथ अगर आज आपकी भी बर्थडे है तो आपको भी हमारी ओर से हैप्पी बर्थडे। और लीजिए प्रोग्राम का लास्ट एंड फाइनल आवर शुरू हो गया है, और इस आवर में आप मेरे साथ कुछ ब्लैक एंड वाइट क्लासिक सुनते हैं और हम खेलते हैं थ्री वर्ड्स गेम भी। तो चलिए तैयार हैं थ्री वर्ड्स गेम जानने के लिए, लेकिन उससे पहले जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी को एक बार फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम। आपके ढेरों मैसेजेस मिले हैं और आपको आज की यादों के गाने भी पसंद आए, सो थैंक यू। एंड अंजलि कहती हैं कि ये गाना जो आपने बजाया ना, मांग लूंगा मैं तुझे, आपको पसंद है, चलिए मैं इसको आपको डेडिकेट कर देती हूँ। एंड शेखर जी, जुबली कुमार के गीत आपने इंजॉय किए, थैंक यू। रियाना से अनिल सोनी जी, थैंक यू सो मच, है ना, थैंक यू। और हरीश खत्री जी, हाँ, आइस लॉली आप भेज रहे हैं, यस मौसम है ये ठंडी ठंडी मीठी मीठी आइसक्रीम और मिल्क जूस पीने का, सो थैंक यू साथ देने के लिए। थैंक यू गिरीश जी भारत से, संध्या भावसर, थैंक यू शोभना राय, सपना परेश जी, थैंक यू मालती जी, थैंक यू सुनील कपूर जी, विजय गुनोवा जी, राजीव पटेल जी, और हमारे जितने भी साथी हमेशा साथ देते हैं आज भी जुड़े हुए हैं, सो थैंक यू। बिल्कुल आप सब तैयार हैं, आपके मैसेजेस बता रहे हैं, तो चलिए बात कर लेते हैं आज के थ्री वर्ड्स गेम की। तो हमेशा की तरह जो नहीं जानते उनको बता दूं कि बॉलीवुड के किसी एक गाने से जो शुरू की तीन चार लाइनें होती हैं वहां से मैं तीन वर्ड्स लेती हूं, और आपको बताना होता है, पहचानना होता है कि गाना कौन सा है। तो आज का जो पहला वर्ड है वो है दिलदार, दूसरा वर्ड है तैयार, और तीसरा वर्ड है पार। कौन सा है ये गाना, सोचिए। दिलदार, तैयार, पार, लता जी की आवाज़ है, 1972 में आई थी ये फिल्म, और नौशाद का म्यूज़िक है। देखें तो सही आप इस गीत को पहचान पाते हैं या नहीं, और अगर आप पहचान पाते हैं तो बस देर किसी बात की नहीं है, आप हमें अपना मैसेज भिजवाइए हमारे इस नंबर पर।
1: WhatsApp message like a gold now on 0744-232323. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो वन पाउंड आज आपको देगा 127.2 भारतीय रुपए, लेकिन याद रखिए कि ट्रांसफर आपको करवाना होगा बाय एसबीआई ब्रांच ऑनलाइन बाय यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई रहेंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: तो इस बार के हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक शकील बदायूनी है, तो सोचा क्यों ना अगले गाने से ही ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का सिलसिला शुरू कर दिया जाए। सुनवाती हूँ आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का पहला गाना, जिसे लिखा है हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक शकील बदायूनी ने।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Ye hai Laika Gold.

0: Set Co-Food Containers, total satisfaction.
1: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
2: रेडिंग तैयार हो जाइए, रेडिंग मेला आ रहा है पामा पार्क में 1st और 2nd अगस्त दोपहर 12 से शाम 7 बजे तक। एंजॉय कीजिए लाइव परफॉर्मेंसेस बाय हरभजन तलवार, मैस बोनाफाइड, मानक ई एंड सोना वालिया, प्लस लाइव सिंगिंग, डांस, शॉपिंग, टेस्टी फूड, फन फेयर, ढोल और डीजे। एंट्री बिल्कुल फ्री। मोर डिटेल्स के लिए कॉल करें 07517801701। रेडिंग मेला पामा पार्क, वोकिंगहम रोड, रेडिंग, RG6 1LF। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो।
3: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉग के शोरूम्स में आइए या फिर की फर्नीचर .co.uk पर जाएं।
2: Cartel's Couture, for every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
4: Discover Cartel's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
2: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
4: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
2: Cartel's Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
4: Visit Cartel's Couture. .co.uk
5: Shri Jagannatha Society UK warmly invites you to Rath Yatra 2026, a divine celebration of Lord Jagannath. Saturday, 18 July, subah 10 baje se sham 4 baje tak, Navnath Center, He's UB3 1AR mein. Bhajans, aarti, sacred rath pulling aur prasad ka laabh zarur le. Event free hai, lekin registration mandatory hai. Free parking bhi sirf registration ke saath available hogi. Register now at shrijagannath.uk/events/rath-yatra2026. Jai Shri Jagannath.
6: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
7: वेल, शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची, टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन 4 मजेदार फ्लेवर्स।
6: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
8: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LikeAGold.com.
9: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Like a Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: कर जा।
1: क्या गाना गाया है आशा जी ने और क्या लिखा है शकील बधायूनी ने, जो है हमारे इस बार के आर्टिस्ट ऑफ द वीक। और ये था हमारे आज के ब्लैक एंड वाइट क्लासिक का पहला गाना भी, जिसे आप सबने पसंद भी किया है और आपके ढेरों मैसेजेस भी मुझे मिल चुके हैं, क्योंकि हमारा थ्री वर्ड्स गेम भी चल रहा है।
2: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM।
1: तो जिन साथियों ने सही आंसर्स दिए हैं उनके नाम मैं जरूर बताऊंगी, लेकिन फिलहाल सुनवाऊंगी आपको आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का दूसरा गाना।
3: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
4: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: शम्मी कपूर की फिल्म कल्याण जी, आनंद जी का म्यूजिक और मुकेश जी की आवाज, और ये था हमारे आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का दूसरा गाना।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो चलिए अब बात कर लेते हैं आज के हमारे थ्री वर्ड्स गेम की, जिसको बहुत सारे साथियों ने पहचान लिया है और कुछ साथियों ने जवाब सही नहीं भी दिया है, लेकिन ज़्यादातर के आंसर्स बिल्कुल करेक्ट हैं। तो जिन्होंने सही जवाब दिए हैं उनमें सबसे पहले नाम आता है नरेन पटेल जी आपका, संध्या भावसर, रेणू जी, गीता हर्षद जोशी, मनीषा शाह, रुखसाना अफजल फ्रॉम मैनचेस्टर, दिव्या जी हैरो से, अर्जुन जी, अमृता, भरत गंगाराम जी सहर, राजीव पटेल, करसन पिंडोरिया, दिनेश पोपट जी, नीलेश तन्ना, अनिल सोनी, तोशी अमृता, अयूब चौहान जी, तोची पनेशर, उल्लास एंड कुकी। आई एम श्योर मैंने सबके नाम लिए हैं, लेकिन अगर किसी का छूट जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं फिर से चेक कर लूँगी। और अब थोड़ी ही देर में सुनवाती हूँ आज के थ्री वर्ड्स गेम वाला गाना, लेकिन उससे पहले एक और बहुत ही प्यारा सा गाना आयशा जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में।
1: This is Ritu Sharma.
3: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: ये भी राजेंद्र कुमार और वैजयंती माला की फिल्म गमार से लिया था गाना। और ऐसे और भी बहुत सारे गाने हैं जो राजेंद्र कुमार के ऊपर पिक्चराइज किए गए हैं। आज यादें में हमने उन्हें याद किया। गाने तो मैंने बहुत सारे सोचे थे लेकिन समय ही नहीं मिला उन्हें प्ले करने का। लेकिन ये गीत आप सबने पसंद किया है, थैंक यू। और थ्री वर्स गेम वाला गाना भी बहुत सारे लोगों ने सही बताया है। हाजरा जी आपका आंसर भी सही है और कहती हैं नौशाद नहीं है उसके म्यूजिक डायरेक्टर। तो भाई नौशाद जी भी हैं और एक और हैं, अगर दोनों नाम बता देती तो आपको समझ में नहीं आ जाता कि गाना कौन सा है, फिर सवाल पूछने का फ़ायदा क्या होता है ना, इसलिए मैंने एक ही बताया है। लेकिन आप सबने सही पहचाना है। आज के सवाल वाला गाना हमने फिल्म पाकीज़ा से लिया है जो मीना कुमारी और राजकुमार की एक जानी मानी फिल्म है। और बस देर किस बात की, उस गीत को सुनवाने वाली हूँ आपसे बस थोड़ी ही देर में।
1: Holiday breaks are brought to you by South Old Travel.
0: लेकिन उससे पहले याद दिला दें कि अगर कहीं जाने की सोच रहे हैं तो दुबई जाइए, साउथ ऑल ट्रेवल के पास बहुत अच्छी डील्स है। उन्हें फ़ोन कीजिए 0208-574-8410 पर, अपनी टिकट्स बुक कराइए, सभी कुछ इट ऑल प्रोटेक्टेड भी है।
1: Holiday breaks were brought to you by South Old Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southoldtravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
2: ये है
3: Leica Gold.
4: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
5: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
4: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: विजिट travelhubworld.com.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location,
6: high appreciation
7: in Dubai.
8: Start

0: जी हाँ रमीला जी, आपने भी हमें गाना बिल्कुल सही पहचान कर बताया है। ये आप सब की फेवरेट पाकीज़ा फिल्म से लिया था गाना। आज का सवाल बहुत ही आसान था, तभी तो ज्यादातर साथियों ने बिल्कुल सही सही जवाब दे डाला।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
0: तो अब हमारा और आपका साथ काफ़ी कम बचा है, लेकिन अभी तो मैं एक दो गाने और सुनवाऊंगी। लेकिन उससे पहले कुछ साथी कह रहे हैं कि ऋतु हम भी शो देखने जा रहे हैं, तो बिल्कुल जाइए, देखने ज़रूर जाइए, क्योंकि आज दो शो थे, एक शायद हो गया होगा या चल रहा होगा, और एक आज शाम को है, और कल भी दो शो हैं और उसके बाद सब ख़त्म। और बस मैं यही कहूँगी कि अगर आप जा रहे हैं तो आपको मज़ा आएगा, क्योंकि हर किरदार को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है, चाहे वो शूरपनखा हो, चाहे लक्ष्मण हो, जामवंत हो, गीधराज हो, सीता जी हो, हनुमान जी हो, मंदोदरी रंभा, श्री राम या फिर महादेव, कमाल का काम सभी ने निभाया है। और इतने बड़े बड़े डायलॉग्स कैसे बोले हैं। देखिए लाइव शो में तो रीटेक्स भी नहीं होते, जब आप थिएटर देखते हैं तो बिना रुके टुके बिना अटके खूबसूरती से काम करना कमाल की बात होती है। और एक और चीज़ बताना चाहूँगी, मैंने रियलाइज़ किया कि हमने हमेशा रावण को ज़ोर ज़ोर से दहाड़ मारते हुए, गुस्साते हुए, चिल्लाते हुए देखा है, लेकिन इसमें आशुतोष राणा ने हमें रावण का हंसी मजाक वाला हिस्सा दिखाया है। थोड़ा फन है, थोड़ी मस्ती है, एंटरटेनमेंट भी है, हंसी मजाक भी है, और नाराज़गी तो ज़रा भी नहीं है। तो जो जिन्होंने टिकट्स बुक कराए हैं आपको ज़रूर मज़ा आएगा, देखकर आइए। कल बात करते हैं कि आपको कैसा लगा। और हाँ, एक बात और कहना चाहूँगी, मुझे कल वहाँ हमारे बहुत सारे लिसनर्स से भी मिलने का मौका मिला, तो हमेशा ही जब आपसे मिलती हूँ बहुत अच्छा लगता है। और कुछ लिसनर्स से बात नहीं हो पाई तो वो दूर से ही कह रहे थे, हाय रितु, वी लव योर शो। तो ये लाइन सुनकर तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। सो थैंक क्यों आपके इतने सारे प्यार के लिए। अब बस इतना प्यार दे ही दिया है तो क्या करूं, एक गाना और सुनवा दूं। चलिए फिर हो जाए।
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: आज 1 pound आपको देगा 128 भारतीय रुपए, 372 पाकिस्तानी रुपए एंड 165 बांग्लादेशी टकास।
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Leica.
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: So Gold Rate is 98.8 pounds per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
2: Like a gold.
1: This is Like a Gold.

0: वैसे मेरी आंखें देखकर भी आप यही कहेंगे कि तू कल रात को सोई नहीं, क्योंकि मैं कल रात बहुत देर घर में पहुंची थी शो खत्म होने के बाद, तो मेरी भी आंखें लाल हैं और अब मैं घर जाकर चैन से सोने वाली हूं ताकि कल आपसे फिर से मिल सकूं। लेकिन अगला गीत लेकर चलेगा न्यूज तक। न्यूज के उस पार अनुराग आपके साथ होंगे गोल पर, नीरज आपके साथ होंगे लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर, एंड हमारी फजीला होंगी लाइका रेडियो मैनचेस्टर पर आपके साथ। लेकिन आपको बता दें कि लाइका रेडियो लंदन पर थ्रोबैक वीकेंड चल रहा है, जहां पर क्लासिक्स आपको सुनवाए जा रहे हैं। और अगर आप 90s, 2000, 70s के गाने पसंद करते हैं तो आप लाइका रेडियो भी सुन सकते हैं। तो जो मर्जी सुनिए।
1: Hey there, मैं हूँ बाली ब्रह्मभट्ट। Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, अनसुनी बातें, राग आधारित गाने on Leica Gold and Leica Radio Midlands from 1 PM to 4 PM।
0: मेरी ओर से आप सबको बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।
2: ये है Leica Gold,
3: ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208782883 और विजिट ट्रेवल हब world.com।
4: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: विजिट ट्रेवल हब world.com।
5: चावल हो बेस्ट, सब करे टेस्ट, दिशा राइस का है जमाना, दिशा बासमती राइस।
4: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड, अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी, सिंग्सबरीज, कच्चा बाजार, समीर बाजार, मोर फूड्स, सीरा साउथ हॉल, डेगनम सुपरमार्केट, ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाव एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड। दिशा राइस, कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस।
6: भजन फिनोमिनन अब लंदन में धमाके करने आ रहा है। बैकस्टेज सिबलिंग्स परफॉर्म लाइव फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द यूके। जॉइन द पायनियर्स ऑफ भजन जैमिंग ऑन फ्राइडे द 9th एंड सैटरडे द 10th ऑफ अक्टूबर एट SKLPC नॉर्थोल्ट। एक शाम सोलफुल म्यूजिक, डिवोशन और एनर्जी के नाम। टिकट्स बुक कीजिए ऑन SKLPC.com/BSS। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइका रेडियो नेटवर्क।
7: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
8: No more worries for me or you.
9: Southall Travel, at all protected.
10: Location, location, location.
11: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
10: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
11: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
10: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
11: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
10: And the best part, townhouses and villas Greens start from just 711,000 pounds.
11: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
10: High appreciation.
11: In Dubai.
12: Herald. New world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
13: Lotto from the National Lottery now gives you two chances to win with every ticket. So it could be you and it could be you. You and then the same you again. You. One ticket, two chances to win. New Lotto. It could be you and it could be you.
14: See website for lotto changes. Rules apply. Players must be 18 or over.
15: Up next, Golden Rock with Unrock on Leica Gold. Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma.

0: तुझ में क्या है दीवाने, लता जी और किशोरदा की आवाज में बड़े दिल वाला फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतनी ज्यादा सफल नहीं रही थी, लेकिन फिल्म के गाने आज भी याद किए जाते हैं। चाहे इस गाने की बात करें, किशोरदा का सोलो गाया हुआ गाना जीवन के दिन छोटे सही, और फिर चाहे कहीं ना जा आज कहीं मत जा गायक, इसमें जो गायक थे वो थे किशोरदा और लता जी। आया सरम आया दीवाना तेरा भी बड़े ही मूड में किशोरदा ने इस फिल्म के लिए गाया है। और रोचक जो बातें इस फिल्म से जुड़ी वो ये हैं कि फिल्म बड़े दिल वाला 1970 में आई फिल्म कटी पतंग का रीमेक थी। हालांकि ये फिल्म 1983 में आई थी बड़े दिल वाला, लेकिन 1970 में आई फिल्म कटी पतंग का ये रीमेक क्यों कही जाती, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल के जो किरदार थे उनकी भूमिकाओं को, उनके करेक्टर्स को बिल्कुल पलट दिया गया था, उल्टा कर दिया गया था और फिर इस कहानी को सामने लाया गया था। तो ये एक छोटा सा माइनस पॉइंट, लेकिन गाने बड़े ही मधुर, क्योंकि आर डी बर्मन साहब ने संगीत दिया था और मजरू सुल्तानपुरी साहब ने अपना सारा प्यार अपनी लेखनी के द्वारा इस फिल्म के एल्बम में अपना योगदान दिया था। कमाल के इस फिल्म के गाने। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे प्यारे संदेशों का, और बहुत बहुत शुक्रिया रितु शर्मा जी का। मैं हूं आपके साथ अनुराग, और आप सुन रहे हैं वीकेंड वाली पाठशाला। गोल्डन वर्ड भी आएगा और गोल्डन राग भी आएगा, दिमाग की बत्ती भी जलेगी और महफिल भी जमेगी। आगे बढ़ते हैं, अगला गाना किशोरदा की ही आवाज में, ख्वाब देखने वालों आंखें खोल लो, महफिल सज चुकी है।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: अगर आप इंडिया में पैसे भेजना चाहते हैं तो आज के दिन एक ब्रिटिश पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में आपको मिलने जा रहे हैं 127.20 पैसे। याद रखें, आप अपने पैसों को वाया ब्रांच, ऑनलाइन और योनो SBI UK मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Leica Gold.
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
3: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
4: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 02023963-5757. Greens by Danu. Prime location.
3: High appreciation.
4: In Dubai.
5: आपके सामने एक red button है.
6: दबा दिया.
5: नहीं दबाना था.
7: The madness is back. Dhamal 4.
8: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा.
7: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jafri. Return in Dhamal 4. Directed by Indra Kumar.
9: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी.
7: Watch the biggest family entertainer, Dhamal 4, in cinemas now. Are you sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
10: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket. Not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
7: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
10: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915. Or visit cashbackremortgage.co.uk.
7: Cashback Remortgages. Your mortgage should work for you.
11: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574-8410। दैट्स 0208574-8410। साफो ट्रेवल।
12: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
13: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉग के शोरूम्स में आइए या फिर kfurniture.co.uk पर जाएं।
14: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड, और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply। sonatours.co.uk Japan Cherry Blossom Tour in March and April 2027. Book before the end of July and get up to 400 off. Call Sona Tours on 0208 951 0111.
15: Come on, England! Roar it, score it, bring the World Cup home. All the best to England from Leica Radio Network. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
16: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Kishore Da ki madhmast awaaz mein teen deviyan film ka gaana sun rahe the aap. Halanki is film ko puri tarah se black and white hi banaya gaya tha, lekin last ka climax iska rangeen shoot kiya gaya tha. हालांकि इसका बाद में एक इंग्लिश वर्जन भी बना जिसका नाम ओ बॉय एंड थ्री गर्ल्स भी लेक का नाम रखा गया, लेकिन किसी कारणवश वो अंग्रेजी वाला जो इंग्लिश वाला जो वर्जन था वो रिलीज नहीं हो पाया. चलिए एक और अगला गाना सुनाते हैं किशोर दा की आवाज में. आशा ताई है साथ में. नटखट सा गाना है, फिल्म का नाम है जॉनी मेरा नाम.
0: ऑन राग विद गोल्डन राग.

0: बात अब सुनाएंगे, कमाल भी दिखाएंगे। अगला गाना जो आ रहा है रफी साहब की आवाज में, लता जी के साथ में, फिल्म का नाम है आशा। थोड़ी सी धूप में छाओ की आशा, सुनते रहें।
1: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल। एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे।

0: ये गीत नहीं, मैं तो यही कहूंगा कि इसको, इस गीत को कहना चाहिए सेल्फ मोटिवेशन करने के लिए एक टॉनिक है। धर्म करम फिल्म का एक गाना सुन रहे थे। अगले गाने के बाद हम आपको बताएंगे कि क्यों जलानी है आपको अपने दिमाग की बत्ती और कौन सा है वो गोल्डन बर्ड।
1: करेंसी अपडेट्स स्पॉन्सर्ड बाय लेमफाई मोबाइल ऐप। सेंड मनी टू इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश स्विफ्टली फ्रॉम योर फोन।
0: लेमफाई के जरिए 1 pound के बदले इंडियन करेंसी में 127.95 पाकिस्तानी रुपीज, 372.57 श्रीलंकन रुपीज, 449.67 बांग्लादेशी टका, 165.17 एंड 1 US dollar 1.33।
1: लाइका रेडियो। Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at 98 pounds and 82 pence per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley. C A. This is Leica.

0: लता जी की आवाज में क्या खूबसूरत गाना है। अनामिका फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे। आर डी बर्मन साहब ने इस फिल्म का संगीत दिया था और जया जी और संजीव कुमार साहब के ऊपर ये गाना फिल्माया गया था। फिलहाल वक्त आ गया है दिमाग की बत्ती जलाने का। जल्दी जल्दी से अपनी फरमाइश का पिटारा खोलिए और हम तक पहुंचाइए अगर AGAR अगर से रिलेटेड गाने, जिस भी गाने में अगर मगर नहीं, अगर सिर्फ आता हो वो गाने आप हम तक पहुंचा सकते हैं। शुरू हो जाइए, जला लीजिए दिमाग की बत्ती।
1: ये है लाइका गोल्ड। वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
2: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 02089223444 line.
3: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
4: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
3: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
4: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
3: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
4: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
3: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
4: ICICI Bank UK PLC is authorized by the PRA and regulated by the FCA and PRA. Start touring.

0: visit starters.co.uk or call 208-900-2323.
1: यार कभी कभी अपने देश के छोले भटूरे, राज कचोरी और मिठाइयों की बहुत याद आती है,
2: तो फिर इंतजार क्यों? हॉन्स्लो एंड साउथ हॉल के बाद अब बीकानेर वाला आ गया है गैंसिल इलफोर्ड में।
1: सच?
2: बिल्कुल, देश का असली स्वाद, लाजवाब मिठाइयाँ और अपनेपन की खुशबू सब एक ही जगह।
3: आज ही विजिट करें बीकानेर वाला 513-519 क्रैनबुक रोड, गैंसिल इलफोर्ड, IG2 6HA। कॉल करें 07555-506-015। बीकानेर वाला, टेस्ट ऑफ इंडिया नाउ इन इलफोर्ड।
4: चावल हो बेस्ट, सब करे टेस्ट, दिशा राइस का है जमाना, दिशा बासमती राइस।
5: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड, अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी, सिंग्सबरीज, कच्चा बाजार, समीर बाजार, मोर फूड्स, सीरा साउथ हॉल, डेगनम सुपरमार्केट, ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाव एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड। दिशा राइस, कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस।
6: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
7: Minar Jewelers, Wandsworth's Business Award winners. Best Customer Service 2026. Come and find out why. Beautiful diamond engagement rings starting from £500. Phone 0208-767-7547.
8: On Rug with Golden Rug.

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Hum Raaz film ka ek gaana sun rahe the aap. Ye film bhi kamal ki, is film ka sangeet bhi, kyunki is film ka sangeet jana jata hai Ravi sahab ke कंपोज करने को लेकर और साहिल लुधियानवी साहब की लेखनी को लेकर और महेंद्र कपूर साहब की जादुई आवाज़ को लेकर. एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच पांच गाने गाए हैं इस फिल्म में महेंद्र कपूर साहब ने, और अर्शा ताई ने भी एक सोलो गीत से इस महफिल को सजाया था और ये गाना हम तक पहुँचाया है सुमिला मुंगर जी, निर्मला जी और सुमन जी ने. बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही. एक नाम लेना रह गया, अगर तुम ना होते पहला जो बैक टू बैक गाने हमने आपको सुनाए उसमें दूसरा गाना अगर तुम ना होते फिल्म का, वो गाना हम तक पहुंचाया था. एक नाम जिनका रह गया है उनका नाम है मीना शाह जी. बहुत बहुत शुक्रिया मीना जी, आपका नाम लेना रह गया था लेकिन देर से ही सही, दिमाग की बत्ती मेरी भी जल गई. अगला गाना किसकी फरमाइश के पिटारे से निकल कर आ रहा है लेकिन है मेरा भी बहुत ही फेवरेट ये सॉन्ग. सुनते हैं, इंजॉय करते हैं.
0: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: Track of the Hour sponsor by Coca Noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store.
1: रोशन साहब के संगीत से सजाए ये गीत आप सुन रहे थे. मुकेश साहब की आवाज में दिल ही तो है फिल्म का ये गाना था. बहुत ही कमाल का पिक्चराइज भी ये गाना हुआ है राज कपूर साहब और नूतन जी के ऊपर. कमाल के एक्सप्रेशन है इसमें नूतन जी के खास तौर पर, और बिल्कुल सधा हुआ चेहरा लेकर राज कपूर साहब इस गीत को गा रहे हैं. बड़ा ही कमाल का फिल्म आ गया ये गीत. और ये गीत हम तक पहुंचाया था किरण जी ने. हालांकि ये गीत मुझे भी बहुत पसंद है, और अब तो इतना ज़्यादा पक्का, इतना मजबूत, इतना पुराना रिश्ता हो गया आप लोगों के साथ कि मुझे याद हो जाता है, मुझे पता चल जाता है ये गीत किसे किसे पसंद है. जैसे सबसे पहला नाम आता है मीना लखानी जी का, जिनको ये गाना बहुत पसंद है, और जब भी ये गाना प्ले होता है उनका मैसेज आता है. आजकल नहीं आ रहा है, उम्मीद है सब कुछ अच्छा हो उनके साथ, भला चंगा हो, और जल्दी वो अपना मैसेज हम तक पहुँचाएँ. इससे पहले जो हमने आपको गाना सुनाया था हमराज फिल्म का महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ में, वो गाना हम तक पहुँचाया था. एक बार उनका नाम लेना में रह गया था. उनका नाम है रानी जी, फ्रॉम स्लाव से. रानी जी आपका नाम देर से लिया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ. अगला गाना आशाताई और रफ़ी साहब की आवाज़ में किसकी फरमाइश के पिटारे से निकला है. लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन.
2: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ.
1: लाइका रेडियो नेटवर्क हैज कंफर्म्ड अ पार्टनरशिप विद द प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी ब्रांड रागासन. डिटेल्स एट laikaradio.com.
3: On Rag with Golden Rag.
4: आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार

0: आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे। एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म का गाना आशा दाई और रफी साहब ने क्या खूब निभाया है, और ये गाना हम तक पहुंचाया है निर्मल किरीट जी, पंकज जी और सालिम अख्तर साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही।
1: हॉलिडे ब्रेक्स आर ब्रॉट टू यू बाय साउथ ऑल ट्रैवल।
0: साउथ ऑल ट्रैवल लेकर आया आपके लिए डील का धमाका। कॉल कीजिए साउथ ऑल ट्रैवल को दुबई के अच्छे से अच्छे डील्स के लिए। नंबर है 0208574 8410। अटोल प्रोटेक्टेड।
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. This is Leica Gold. Leica Extra Podcast Update.
0: Leica Extra Podcast का अपडेट, एपिसोड नंबर 24. टाइटल है ईस्ट अफ्रीकन एशियंस। वी टॉक अबाउट हाउ ईस्ट African Asian turned adversity into opportunities. Leica Extra podcast available on Spotify, YouTube, Amazon, Apple and other major streaming platforms.
1: Leica Extra is here. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
2: Do it for your wife, who told you to pick up bread, but instead you picked up Fred, your grandson, again. And now your daughter is calling because he missed football. That's the fourth time this month. You can wave his future career goodbye. If you don't do it for you, do it for your wife and little Freddy.
3: Book a free test today at bootshearingcare.com and take advantage of our interest-free payment plans. Boots, with you, for life. T's and C's apply.
4: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल TravelHub 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com।
5: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
4: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: विजिट TravelHubWorld.com।
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Daniel. Prime location,
6: high appreciation
7: in Dubai.
8: Kajal's Couture, for every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
9: Discover Kajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
8: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
9: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
8: Kajal's Couture, Southall, where every occasion finds its perfect style.
9: Visit kajalscouture.co.uk.
10: UK singers, this is your moment. For the first time, ZTV's iconic singing reality show, Sare Gamapa, is holding auditions in London. If you're 18 and over and can sing in Hindi, register now. Auditions take place Sunday, the 26th of July at St. James Court at the Taj Hotel, London. Your voice could be the next big discovery.
11: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
12: भाइयों बहनों, खुशखबरी, 1905 से असली स्वाद बीकानेर वाला अब इल्फर्ड में। इंडिया फेमस छोले भटूरे, अ मैच मेड इन हेवन। फैमिली को लाओ, फ्लेवर्स ऑफ इंडिया का मजा लो। मिले 513-519 ग्रैंड ब्रुक रोड, गैंडसू, इल्फर्ड, IG2-6HA, बीकानेर वाला, नाउ इन इल्फर्ड।
13: આ સપ્ટેમ્બર પેરિસમાં ઇતિહાસ લખાઈ રહ્યો છે।
14: બીએપીએસ મંદિરનું ઓપનિંગ અને સ્ટાર ટૂર્સ તમને લઈ જઈ રહ્યું છે આ પવિત્ર યાત્રા પર।
13: યુરોપના 3-9 દિવસના ટૂર્સ,
14: ફ્રાન્સ, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, ઇટલી અને જર્મની સાથે
13: દર્શન પણ અને યુરોપ પણ।
14: સીટ્સ જલ્દી ભરાઈ રહી છે, આજે જ બુક કરો સ્ટાર ટૂર સાથે।
13: કોલ 0208900-2323 ધ સ્ટાર ટૂર્સ।
14: ટ્રાવેલ વન્સ એન્ડ યુ વિલ ટ્રાવેલ અગેન એન્ડ અગેન।
1: લાઇક અ રેડિયો નેટવર્ક। proud hospitality partner, Ragasan. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app.
15: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 एम टू 1 पीएम ऑन लाइका गोल्ड रेडियो लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर

0: आशा दाई किशोर दा की आवाज में जवानी दीवानी फिल्म का गाना हम तक आया था अमित पटेल जी और शांतनु जी की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। अगला गाना किसके फरमाइश के पिटारे से निकल कर आने वाला है, सरप्राइज है, लेकिन गाना बड़ा ही कमाल का है।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: LemFi के जरिए 1 पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में 127.99 पाकिस्तानी रुपीस 372.62, श्रीलंकन रुपीस 449.72, बांग्लादेशी टका 165.19, अफगान अफगानी 86.70 एंड 1 US डॉलर 1.34.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £98.82 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley. Non-stop classics. Like a gold.

0: रवि साहब और सुमन कल्याणपुर जी की आवाजों में बेटी बेटा फिल्म का ये गाना सुन रहे थे आप, और ये गाना हम तक पहुंचाया था कर्सन पिंडोरिया, साजिब और कुमार साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही। और अगला गाना किसकी फरमाइश के पिटारे से निकल कर आ रहा है वो भी हम आपको अभी बता देते हैं। लता जी की आवाज़ है, थोड़ा सा सैड सॉन्ग है, फिल्म का नाम है आपकी परछाइयाँ, और ये गाना हम तक पहुँचाया है उल्लाह जी, फरीदा गुलाम अली जी और मनोहर जी ने। आप तीनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ये सोच रहा हूँ कि अगले घंटे आपको गोल्डन रॉक की जो तीन ऑप्शंस देने हैं उसके लिए आपको वक्त अगर कम लगता है तो हम वो तीन ऑप्शंस आपको अभी बताने जा रहे हैं। तैयार हैं आप लोग? तो सुनने के लिए हो जाइए तैयार, और दिमाग की बत्ती एक बार फिर जलाने के लिए भी हो जाइए तैयार। तीन गाने गोल्डन रॉक के हम बताने जा रहे हैं अभी आपको।
1: आप सुन रहे हैं गोल्डन रॉक अनुराग के साथ।
0: गोल्डन रॉक के तीन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन है ऑप्शन ए, मुझे कितना प्यार है, फिल्म का नाम है दिल तेरा दीवाना। ऑप्शन बी है तेरे चेहरे में वो जादू है, फिल्म का नाम है धर्मात्मा। और ऑप्शन सी है वादा कर ले साजना, फिल्म का नाम है हाथ की सफाई। इन तीन गानों में से आपको एक चुनना है और उसे वोट की तरह हम तक कास्ट करना है, और फिर फाइनली हम चुनेंगे आपके वोटों के आधार पर आज का गोल्डन राग। शुरू हो जाइए एक बार फिर से दिमाग की बत्ती जलाने के लिए।
2: लाइका गोल्ड रेडिंग, तैयार हो जाइए, रेडिंग मेला आ रहा है पाम पार्क में 1st और 2nd अगस्त, दोपहर 12 से शाम 7 बजे तक एंजॉय कीजिए लाइव परफॉर्मेंसेस बाय हरभजन तलवार, मास बोनाफाइड, मानक ई एंड सोना वालिया, प्लस लाइव सिंगिंग, डांस, शॉपिंग, टेस्टी फूड, फन फेयर, ढोल और डीजे, एंट्री बिल्कुल फ्री। मोर डिटेल्स के लिए कॉल करें 07517801701। रेडिंग मेला पाम पार्क, वोकिंगहम रोड, रेडिंग, RG6 1LF, एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर Laika Radio.
3: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
4: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
3: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
4: And you didn't pay those massive roaming charges?
3: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
5: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
6: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर kfurniture.co.uk पर जाएं।
7: आपके सामने एक रेड बटन है,
8: दबा दिया।
7: नहीं दबाना था।
9: The madness is back, धमाल 4।
10: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा।
9: Starring अजय देवगन, अर्शद वारसी, रितेश देशमुख एंड जावेद जाफरी। Return in धमाल 4, directed by इंदिरा कुमार।
11: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी?
9: Watch the biggest family entertainer, धमाल 4, in cinemas now.
12: पता नहीं ऐसे dangerous situations में automatically आके कैसे आ जाता।
13: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.60% on non-withdrawable fixed deposits.
14: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
15: Experience the ultimate escape, 25 unforgettable days across Australia, breathtaking New Zealand and paradise in Fiji. 2 departures, November and February, it's the holiday of a lifetime. First 10 bookings get 300 off. Visit sonatours.co.uk or call 0208 951 0111.
4: Discover Malta and Gozo with a twin center island escape. Fly from a choice of UK airports year round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
8: Rice khareedne ka perfect time aa gaya hai. Buy 20 kg Tilda Basmati rice and get 1.5 kg Gulab Kenyan tea absolutely free. Mix and match Tilda Basmati packs to make up to 20 kgs. Yani ke 4 times 5 kg ya 2 times 10 kg ya 1 times 20 kg. This special offer is available at all quality food stores. Hurry, offer ends while stocks last. Quality foods, quality aur value, dono ek saath.
16: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है. लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं. ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा. संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@laikaradio.com.
17: On Rug with Golden Rug.

0: सारी परेशानी खत्म। लता जी की आवाज में मासूम फिल्म का ये प्यारा सा गीत आप सबके लिए। और इससे पहले हमने आपको गाना सुनाया था हम आपके हैं कौन फिल्म से लता जी और एसपी बाला सुब्रमण्यम साहब की आवाज में। मौसम का जादू है भाई हर तरफ। और एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ आज के गोल्डन रा के तीन ऑप्शंस जिन्हें आपको वोट की तरह कास्ट करना है। सबको रूल्स एंड रेगुलेशंस पता ही हैं, तो वक्त ज़ाया न करते हुए एक बार फिर से ऑप्शन ए है मुझे कितना प्यार है, फिल्म का नाम है दिल तेरा दीवाना। ऑप्शन बी है तेरे चेहरे में वो जादू है, फिल्म का नाम है धर्मात्मा। और ऑप्शन सी है वादा कर ले साजना, फिल्म का नाम है हाथ की सफाई। अपने अपने वोट कास्ट करना शुरू कर दीजिए, वोटिंग लाइंस ओपन हो चुकी हैं। जब तक वोटिंग लाइंस ओपन रहेंगे हम आपके वोट्स रिसीव करते रहेंगे। अगला गाना आशाताई और कमल बरोड़ जी की आवाज़ में बड़ा ही प्यारा जाना पहचाना सा नगमा हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक शकील बदायूं जी की कलम से लिखा हुआ।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: इंडिया में पैसे भेजना चाहते हैं तो आज के दिन एक पाउंड के बदले मिल रहे हैं आपको 127.20 पैसे। याद रखें आप अपने पैसों को वाया ब्रांच ऑनलाइन और योनो SBI UK मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रांसफर करते रहें।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: ये है Leica Gold.
3: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probate and for other legal requirements.
0: FIFA World Cup 2026 आज है मैच 10 बजे नॉर्वे और इंग्लैंड के दरमियान क्वार्टर फाइनल्स। इसके अलावा आप बिल्कुल भी मत भूलें कि 15 मिनट्स का फ्री लीगल एडवाइस आपको मिलेगा। स्पॉन्सर्स हमारे हैं रेकलॉ, अगर आप मेंशन करते हैं लाइका।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
4: Dreaming of paradise?
5: Discover the Indian Ocean with Skylord Cruise and Holidays. Book exclusive Emirates holiday offers to Mauritius, the Maldives, Seychelles and Sri Lanka.
4: Choose from luxury beach escapes, family resorts and incredible multi-center holidays, all at exclusive prices.
5: Call Skylord Cruise and Holidays today on 01923883100. That's 01923883100.
4: At all protected.
6: Shri Jagannatha Society UK warmly invites you to Rath Yatra 2026, a divine celebration of Lord Jagannath. Saturday, 18 July, subah 10 baje se sham 4 baje tak, Navnath Center, Hayes, UB3 1AR mein. Bhajans, aarti, sacred rath pulling aur prasad ka labh zarur le. Event free hai, lekin registration mandatory hai. Free parking bhi sirf registration ke saath available hogi. Register now at shrijagannath.uk/events/rath-yatra2026. Jai Shri Jagannath.
7: Kajal's Couture, for every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
8: Discover Kajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
7: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
8: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
7: Kajal's Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
8: Visit Kajal's Couture. Couture.co.uk.
9: Location, location, location.
10: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
9: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
10: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
9: high appreciation
10: in Dubai.
11: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply। Mina Jewelers, best overall business of Wandsworth 2026. Come and find out why. 24 karat gold bars and coins without VAT at the lowest prices. Phone 0208-767-7547.
12: When your daughter's wedding guest list is double-sided, enjoy every hand-clapping second of it. Be a step ahead with Barclays Premier, with our best savings rates. Barclays, backing your future. Eligibility criteria apply, T's and C's apply.
13: Have you noticed the way fans shout at football matches?
14: Oh, wake up!
13: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
15: यार कभी कभी अपने देश के छोले भटूरे, राजकचोरी और मिठाइयों की बहुत याद आती है।
16: तो फिर इंतजार क्यों? हॉन्सलो एंड साउथ हॉल के बाद अब बीकानेर वाला आ गया है गैंसिल इल्फोर्ड में।
15: सच?
16: बिल्कुल, देश का असली स्वाद, लाजवाब मिठाइयाँ और अपनेपन की खुशबू सब एक ही जगह।
17: आज ही विजिट करें बीकानेर वाला 513-519 क्रैनबुक रोड, गैंसिल इल्फोर्ड, IG2 6HA। कॉल करें 07555-506015। बीकानेर वाला, टेस्ट ऑफ इंडिया नाउ इन
1: Like a Gold, London का number one Asian retro music station, अब available है Greater London में 10:35 AM पर DAB Digital Radio पर। Alexa पे बोलो play Like a Gold और online सुनो likeagold.com पे। Artist of the Week is brought to you by our new podcast Like a Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: दादी अम्मा दादी अम्मा मान जाओ, क्या प्यारा गीत है, हर इंसान के बचपन से जुड़ा हुआ, खास तौर पर जो 60s 70s 80s के किड्स हैं। घराना फिल्म का गाना आशा ताई और कमल भरूड़ जी की आवाज़ में। और एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ, आज के गोल्डन राग के तीन ऑप्शंस बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं जो सुन नहीं पाए। भाई सुनने का ही तो काम है, हम दिखाई तो देते नहीं, सुनते तो रहा करिए कम से कम। ऑप्शन ए है, मुझे कितना प्यार है, फिल्म का नाम है दिल तेरा दीवाना। ऑप्शन बी है, तेरे चेहरे में वो जादू है, फिल्म का नाम है धर्मात्मा। और ऑप्शन सी है, वादा कर ले साजना, फिल्म का नाम है हाथ की सफाई। अपने हाथ का ही कमाल दिखाइए और अपने अपने वोट कास्ट करते जाइए। अगला गाना लता जी और मुकेश साहब की आवाज में, प्यारा सा नगमा।
1: ये है लाइका गोल्ड फील गुड ट्रैक, brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
3: Saavan ka mahina पवन करे सोरू

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: 1967 में फिल्म आई थी मिलन, फिल्म का ये गीत सुन रहे थे। मानना पड़ेगा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब को क्या सदा हुआ, फिल्म की थीम को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस फिल्म का संगीत दिया था और ऊपर से कयामत ढाती लता जी और मुकेश साहब की इस गीत में आवाज। याद रखिए वोटिंग लाइन अभी तक ओपन है, अपने अपने वोट कास्ट करते रहें। अगला गाना लता जी की आवाज में, खास तौर पर फीमेल्स फैन फॉलोइंग वाला ये गीत है, सुनते रहें।
0: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
3: On Rag with Golden Rag.

0: संभलने का नहीं, सुनने का मौका है अपने चुने हुए गोल्डन राग का, जिसे आपने भारी मतों के साथ विजयी बनाया है। कौन सा है वो गाना, कौन सा है वो ऑप्शन, बस थोड़ी देर में। और याद रहे, बोर्डिंग लाइन्स हो चुकी हैं अब पूरी तरह से बंद।
1: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ। Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: इंडियन करेंसी में मिल रहे 1 पाउंड के बदले LemFi के जरिए 127.95, पाकिस्तानी रुपीस 372.54, श्रीलंकन रुपीस 449.74, बांग्लादेशी टका 165.19, अफगान अफगानी 87.35 एंड 1 US डॉलर 1.34.
1: Like a radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £98.82 per gram.
1: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley. This is Like a Gold.
3: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.

0: वाह भाई वाह, कमाल है कमाल है, धमाल है। लता जी और रफी साहब की आवाज में दिल तेरा दीवाना फिल्म का गाना बना है आज का गोल्डन राग, भारी मतों से विजयी। और किसने किसने इस गाने को दिए हैं सबसे ज्यादा वोट्स? वैसे सेकंड हाईएस्ट वोट मिले थे तेरे चेहरे में वो जादू है धर्मात्मा फिल्म को, ये भी बता देते हैं आपको। ऑप्शन ए जीता है आज मिसेज इकबाल बेगम, रानी सुना है माला जी, उल्लास जी, निर्मल जी, निमी जोहरा, मनोहर, मंजू जी, अयुब चौहान, हंसा मिस्त्री जी, मीना शाह जी, हंसुमती जी, मिसेज सुदेश टेकर, निर्मला जी, रंजना कुकाडिया, पंकज वर्मा, निधि, करण, सुमित चौरसिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस कंपटीशन में इतना प्यार, इतना एंगेजमेंट बढ़ाए रखने के लिए। कल होगी आपसे मुलाकात सुपर संडे वाली महफिल में, तब तक के लिए बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें और नेक्स्ट सरिता जी का दिल खोल कर करें स्वागत। टेक केयर, बाय बाय।
1: ये है लाइका गोल्ड। वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
2: लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन।
3: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
2: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
3: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 02039635. 757 Greens by Daniel, prime location,
2: high appreciation
3: in Dubai.
4: Chawal ho best, sab kare test, Disha rice ka hai zamana, Disha basmati rice.
5: Disha rice now available at Asian grocery stores nationwide. Available at Sony Cash and Carries, Singsbury's, Kachha Bazaar, Samir Bazaar, More Foods, Sira South Hall, Dagenham Supermarket, all exotic stores in Reading and Slough, and Pick and Save, Canton Road. Disha rice, come down and taste the difference.
6: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान, देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410, दैट्स 85748410।
7: साउथ हॉल ट्रेवल, at all protected.
8: Two businesses,
9: same town,
8: same service.
9: One appears on page one of Google,
8: the other doesn't.
9: Guess which one gets the customer?
8: The truth is brutal.
9: The first page of Google gets the business.
8: Everyone else gets what's left.
9: So here's the real question:
8: when your customers search for what you sell, do they find you?
9: Visit heartyhanks.com and stop letting Google choose your competitors.
8: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
10: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
11: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
10: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
12: 23 days South America in November or April. First 10 passengers up to 300 off. Call Sona Tours on 0208-951-0111 or visit sonatours.co.uk.
13: At Breast Cancer Now, we know checking your breasts can feel daunting. But it's as simple as TLC. Touch, look, check. Touch your breasts, look for any changes, check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer, so it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/TLC.
14: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
15: On RAG with Golden RAG.
16: Next, Sarita Sabharwal with Golden Memories. This is Like a Gold.
17: Hello there. My name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7 a.m. Saturdays and Sundays. Like a Gold in London, the Midlands and Manchester.

0: गुड आफ्टरनून। दो गाने आपने बैक टू बैक सुने ऑन लाइका रेडियो नेटवर्क के जरिए। जहाँ भी बैठे सुन रहे हैं, चाहे आप लंदन और आसपास के इलाकों में हैं और लाइका गोल्ड सुन रहे हैं, या फिर लाइका रेडियो मैनचेस्टर सुन रहे हैं, मिडलैंड्स में सुना जा रहा है ये प्रोग्राम, जहाँ भी बैठे सुन रहे हैं, आपका स्वागत, आपका खैर मकदम करती है आप ही की अपनी प्रेजेंटर सरिता सबरवाल। होप यू वेल, हमेशा खुश और खैरियत से रहें, जिंदगी के हर पल को इंजॉय करते रहें, ये दुआ ये प्रार्थना हमेशा आपके लिए करती आई हूँ और करती रहूँगी। इफ़ यू आर नॉट फीलिंग वेल, गेट वेल सून। इफ़ यू आर फीलिंग बिट डाउन, तो कम ऑन, चेयर अप। लाइफ इज़ टू लिव, लाइफ इज़ टू इंजॉय। जी और शांत से मुस्कुराते, गुनगुनाते, चहकते महकते और थिरकते हुए ये गाने चुन चुन कर लाई है सरिता आप ही के लिए। प्रोग्राम के पहले दो गाने मैंने चुने और इस उम्मीद पर कि आपको ज़रूर पसंद भी आए होंगे। दोनों गीत बहुत खूबसूरत थे। क्या सोचते हैं, इनमें कुछ कॉमन था? क्या कॉमन था? कोई वर्ड कॉमन था या कुछ और? वर्ड भी कॉमन था और कुछ और भी था, मैं ही बताती हूँ आपको। टुडे वी सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ बॉलीवुड्स एवरग्रीन रोमांटिक स्टार कुमार गौरव, बॉर्न ऑन 11th July 1956 इन लखनऊ, बॉर्न ऑन एस मनोज तुली। जब ये पैदा हुई, इनको नाम दिया गया था मनोज तुली का। ही इज़ द सन ऑफ लेजेंडरी लेट एक्टर राजेंद्र कुमार जी एंड मेड अ सेंसेशनल डेब्यू विद द ब्लॉकबस्टर लव स्टोरी इन 1981, जिसका गीत आपने सुना आशा जी की आवाज़ में। और वैसे ही इसमें और भी बहुत से अच्छे अच्छे गाने थे, लेकिन मैंने चुना इस गीत को। The film became one of the biggest hits of its time and its unforgettable songs. कौन से गाने थे इसके, याद आए आपको? याद आ रही है, देखो मैंने देखा है, एक सपना, they are still loved by audience. Although many of his later films didn't match the phenomenal success of Love Story, he delivered memorable performances in films like Naam alongside Sanjay Dutt. Though Sanjay Dutt ka chota role tha, lekin somehow Sanjay Dutt ko is film se zyada fame mili aur unki gaadi aage nikal gayi aur inka kaam bhi zyada tha aur inka role bhi bahut khoobsurat and acting bhi bahut achhi thi, par inko को नाम से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। एंड लेटर ही अपियर्ड इन कांटे, वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स ऑफ 2002। कुमार गौरव इज मैरिड टू नम्रता दत्त, नम्रता दत्त आप जानते हैं सुनील दत्त जी की बेटी, एंड मेकिंग हिम पार्ट ऑफ वन ऑफ बॉलीवुड्स मोस्ट सेलिब्रेटेड फिल्म फैमिलीज। आफ्टर स्टेपिंग अवे फ्रॉम एक्टिंग, इन्होंने अपने बिजनेस की तरफ ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया, चाहे वो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी या कुछ और। So even today Kumar Gaurav is fondly remembered for his charming screen presence, youthful romance and the timeless songs from Love Story which continue to delight music lovers across generations. Ab baki ke jo gaane hain is saavar ke, unme shayad hi koi aur gana Kumar Gaurav ka main shamil kar paun, क्योंकि इन दोनों गीतों में एक वर्ड भी कॉमन था। कौन सा वर्ड कॉमन था जिस पर बेस थे दोनों गाने, अगर आपको पता चल चुका है तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए इत्तला कर सकते हैं। वैसे आपके मैसेजेस मिलना शुरू हो चुके हैं, थैंक यू एवर सो मच। बड़े प्यार से आप मुझे लिखकर भेजते हैं और अपने प्यार का इजहार करते हैं। इसी तरह से आपका और हमारा प्यार बना रहे, सरिता तो बस यही चाहती है। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ा लें।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 127 rupees and 20 paisas today. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probate, and for other legal requirements.
0: भी आज तो क्वार्टर फाइनल्स हैं, नॉर्वे एंड इंग्लैंड के बीच मैच होगा और ये मैच शुरू होगा रात को 10 बजे. Don't forget you can get your 15 minutes free legal advice with our sponsors Rack Law if you mention Leica.
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Sarita Sabharwal with your weekend classics.
3: आपके सामने एक रेड बटन है. नहीं दबाना था.
4: The madness is back. Dhamal 4.
5: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा.
4: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jafri. Return in Dhamal 4. Directed by Indra Kumar.
6: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी.
4: Watch the biggest family entertainer Dhamal 4 in cinemas now.
7: पता नहीं ऐसे dangerous situation में automatically आगे कैसे आ जाता.
8: Packed for the trip? Gifts? Passport?
9: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
8: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
9: Simzy?
8: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
10: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
11: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
12: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है. शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए. गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है. जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी. आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर kfurniture.co.uk पर जाएं.
13: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
14: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org. Assuming you want to get noticed.
15: Rice khareedne ka perfect time aa gaya hai. Buy 20 kg Tilda Basmati rice and get 1.5 kg Gulab Kenyan tea absolutely free. Mix and match Tilda Basmati packs to make up to 20 kgs. Yani ke 4 times 5 kg, ya 2 times 10 kg, ya 1 times 20 kg. This special offer is available at all quality food stores. Hurry, offer ends while stocks last. Quality foods, quality aur value, dono ek saath.
1: Come on England, roar it, score it, bring the World Cup home. All the best to England from Leica Radio Network. Feel good track brought to you by Dairy Valley.
16: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: कितना प्यारा गाना था। हाँ, जानते हैं किस फिल्म से था? वेल, टाइटल ट्रैक था जी चाहता है। यस, जी चाहता है वाज़ द नेम ऑफ द फिल्म। 1964 में आई थी ये फिल्म, एंड इस फिल्म में जॉय मुखर्जी एंड राजश्री ने काम किया था। बहुत प्यारी फिल्म थी, एंड संगीत भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। गाने तो हमेशा चुन चुन कर लाती है सरिता। कल्याण जी आनंद जी का संगीत था, तो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तस्वीर आपकी, आजकल तो तस्वीरें इतनी कॉमन हो गई है ना, हर किसी के हाथ में कैमरा होता है, यानी हर किसी के हाथ में फ़ोन है, फ़ोन में कैमरा है, और कैमरे से जब जी चाहा तो किसी की भी तस्वीर खींच ली, और अगर किसी की तस्वीर नहीं तो अपनी लोग सेल्फीज़ बना लेते हैं। तो आप भी क्या सेल्फ़ी क्वीन हैं? मेरी एक फ्रेंड है, बहुत अच्छी सेल्फीज़ खींचती है। मैं कभी भी अच्छी सेल्फ़ी ना खींच सकती हूँ, और ना ही मेरी कभी सेल्फ़ी अच्छी आती है। आर यू गुड एट टेकिंग सेल्फीज़? अगर हाँ, तो बड़ी इत्मीनान से एक सेल्फ़ी लीजिए और मुझे ज़रा व्हाट्सएप कर दें, मैं आपकी चेहरा तो देखूं कि आपके चेहरे पर इस वक्त कैसी मुस्कान है। तो जल्दी जल्दी अपनी अपनी सेल्फी लीजिए, तस्वीर खींचिए, और मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर बताने का तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप मुझसे भी ज़्यादा जानते हैं, और रटे हुए नंबर आपको, और आपके मैसेजेस बराबर मुझ तक पहुँच ही जा रहे हैं। तो जल्दी से एक सेल्फ़ी खींचिए और मुझे भेज दीजिएगा। बाय द वे, ये गाना जो जी चाहता फिल्म से आपने सुना, ये गीत आप तक पहुंचाया।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: ye hai Laika Gold, 10:35 AM.
1: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
1: ब्यूटीफुल गाना था फिल्म गाइड से, एस टी वर्मन साहब का संगीत, और क्या फिल्म थी। आपने देखी थी फिल्म गाइड? मैंने देखी थी और मुझे देवानंद इस फिल्म में बहुत अच्छे लगे थे, एंड वहीदा रहमान के सारे गाने बहुत अच्छे थे, लेकिन मुझे जो गाना बहुत पसंद है वो था पी हथों से नैना लागे रे, और उसमें जो क्लासिकल बीट आता है वो और भी ज़्यादा शानदार लगता है। आपको गाइड का कौन सा गाना बहुत ज़्यादा पसंद है वो मुझे आप बता सकते हैं। वैसे इस फिल्म में एक एस टी बर्मन साहब ने भी गीत गाया था, अल्लाह मेघ थे, वो भी गाना बहुत खूबसूरत था। सो बताइएगा मुझे कौन सा अच्छा लगता है आपको गाना, गाता रहे मेरा दिल, दिन ढल जाए रात ना जाए, सारे गाने बहुत अच्छे थे। तो मुझे इंतज़ार रहती है आपके मैसेजेस की। सेल्फीज आ रही हैं, और जिन्होंने बहुत सारी प्यारी प्यारी सेल्फीज भेजी है उनके नाम आ रहा है ये आज का अगला गाना। ज़रा सुनिए, और आपकी तारीफ में मैं नहीं कुछ और कोई कहने वाला है क्या। वैसे गीत जो है वो मुकेश जी एंड कंचन जी की आवाज़ में, ज़रा सोचिए सोचिए कौन सा गीत हो सकता है।
2: Sarita Sabharwal with your weekend classics.

0: कितना अच्छा लगता है ना कोई कहे कि तुम जान हमारी हो, तुम प्यार से प्यारी हो। क्या अल्फाज हैं, क्या बात है इन गीतों की। और इस गीत का संगीत किसने दिया था जानते हैं? ये भी संगीत था कल्याण जी आनंद जी का। मैं सोच समझ के नहीं ये गीत चुन रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों बार बार कल्याण जी आनंद जी का ही संगीत आ रहा है, क्योंकि उनका संगीत है ही इतना खूबसूरत। फिरोज़ खान साहब ने बनाई थी ये फिल्म, डायरेक्ट भी की थी, इसमें उनके साथ ही हीरोइन हेमा मालिनी, रेखा भी थी एंड और भी बहुत सारे आर्टिस्ट। प्यारी फिल्म थी, सारे गाने भी अच्छे थे और स्पेशली ये गाना बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। सो आपने पसंद किया। ये जिन्होंने भी मुझे सेल्फीज भेजी हैं ये उन सब के नाम गया। अब आप कहेंगे कि जिन आदमियों ने अपनी सेल्फीज भेजी है वो भाई वो बदल लेना आवाज़, वो जो मुकेश जी की आवाज़ में था वो कंचन जी ले लें, कंचन जी वाला मुकेश जी। समझ लें कि ये आपके नाम भी था गाना। अगर आपने अभी तक सेल्फी नहीं भेजी है तो जल्दी से भेजिएगा। सोहिनी जी, आपने एक्चुअली मुझे भेजा है मैसेज, सोहिनी रावल जी ने, और लिखा है कि सरिता मुझे पता नहीं चल रहा है कि स्टूडियो के नंबर पर किस तरह से व्हाट्सएप भेजा जाए। तो आपको व्हाट्सएप नंबर तो मालूम ही है और हम इतनी दफ़ा व्हाट्सएप नंबर देते भी हैं आपको, बस जैसे मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेजा मेरे पर्सनल पर वैसे ही वहाँ पर भी मैसेज भेजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा आपसे मैसेज रिसीव करके। और जिनके मैसेजेस मुझ तक पहुँच चुके हैं, थैंक यू एवर सो मच, इसी तरह से मैसेजेस भेजते रहिए।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. Join the thousands of heat pump owners feeling warm and fuzzy.
2: I've lived here 20 years. I ain't moving, so I thought better future-proof me home.
3: We started a trend. The Hull Street's applying for the government grant now.
2: With the energy it saves, I don't know what's better off, the planet or my wallet.
3: And their dizzy little bookworm says it's 3 times more efficient than our old boiler.
1: Feel all warm and fuzzy inside with a £7,500 government grant towards your heat pump at gov.uk/clean energy.
4: Eligibility criteria apply. See website for details.
5: Ye hai.
6: Like a gold.
7: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
8: TravelHub, best service with unbeatable price.
9: At all protected.
8: Visit TravelHubWorld.com.
10: Kajal's Couture, for every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
11: Discover Kajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
10: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
11: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
10: Kajal's Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
11: Visit kajalscouture.co.uk.
12: Hey, friends के साथ weekend party हो या खुद के साथ Netflix and chill, a desi tadka is total risk, है ना?
13: Well, she is talking about Jaimin Food potato chips, crunchy, tasty and total desi swad in 4 mazedar flavors.
12: Crunch cannot wait. So visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods potato chips now.
14: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply. From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minaj Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142. When your husband's got his heart set on making the do-a-upper open plan, enjoy every thudding second of it.
15: Yes!
14: Be a step ahead with Barclays Premier, with our exclusive mortgage rates. Barclays. Backing your future. Eligibility criteria apply. All mortgages are subject to application, financial circumstances and borrowing history. T's and C's apply. New Barclays mortgage applications only.
1: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
5: 7 stations. One podcast. One mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk.
6: Hey, this is Sandy Shah. Drive you home every Monday to Friday between 4 and 7 p.m. with the best tunes, mind games, and a bit of Ye Ya Wo. Only Leica Gold.

0: बड़ी प्यारी सी शिकायत थी इनकी, मैं क्या करूं राम पर क्या को का बना दिया था इन्होंने, पर कोई बात नहीं, गाना तो आप समझते ही हैं क्या था क्या हो गया। एनीवे आपके मैसेजेस बराबर मिल रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स, और सेल्फीज भी भेजते रहिएगा।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: भी आज आपको एक पाउंड के बदले मिलेंगे 127 रुपीस एंड 98 पैसे, पाकिस्तानी रुपीस 372.55, श्रीलंकन रुपीस 449.75, बांग्लादेशी टका 165.19, अफगान अफगानीस 87.43, केनियन शिलिंग्स 173.17, US डॉलर्स 1.34.
1: Like a radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Sarita Sabharwal on LIKA Gold.
2: LIKA Gold.
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold ka rate hai is waqt market mein £98.82 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
2: Like a gold.
1: This is Leica.

0: मोहम्मद अजीज़ एंड एस जानकी जी की आवाज़ें आपने सुनी और सच कह रहे हैं कि जाते जाते जाते मुझे तुरू ला गई। एस जानकी प्लेबैक सिंगर, इन्हें आप बहुत से गीतों में इनकी आवाज़ को सुन पाए हैं, सुने और इन गीतों को आपने हमेशा पसंद भी किया। आज वो इस दुनिया को छोड़कर चले गई हैं और हमारी तरफ से उनके परिवार को श्रद्धांजलि, परिवार को हम दुख सहने की शक्ति देते हैं, मिले ऐसा कहूँगी मैं, और उन्हें हम हमेशा याद रखेंगे। लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर एस जानकी हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 88। शी इज़ रिपोर्टेडली डाइड एट अपोलो हॉस्पिटल इन मैसूर एंड आफ्टर कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू एज रिलेटेड एलिमेंट्स। एस जानकी अफेक्शनेटली नोन एज The Nightingale of South India enjoyed an extraordinary career spanning more than 6 decades, and she recorded thousands of songs in Tamil, Telugu, Malayalam, Kannad, Hindi, and several other Indian languages, and making her one of the most known prolific playback singers in India, Indian cinema. Some highlights of her remarkable career is आप सभी को मालूम होगा कि उन्हें 4 दफ़ा नेशनल फिल्म अवार्ड्स मिले फॉर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर। शी रिसीव्ड मोर देन 30 स्टेट फिल्म अवार्ड अक्रॉस साउथ इंडिया, वॉज रिनाउंड फॉर हर वर्सिटैलिटी, एफर्टलेसली सिंगिंग एंड क्लासिकल एंड ऑल्सो डिवोशनल फोक एंड रोमांटिक सॉन्ग्स, एंड उन्होंने बच्चों के भी बहुत गीत गाए और बहुत से लेजेंडरी सिंगर्स के कंपोजर्स के साथ उन्होंने काम किया, लाइक एम एस विश्वनाथन, इलियाराजा, के वी महादेवन एंड लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एंड मैनी मैनी मैनी मोर। इन 2013 शी डिक्लाइंड द पद्म भूषण, सेइंग द ऑनर हैड कम टू लेट इन हर करियर। And her passing marks the end of an era in Indian playback singing, and tributes are pouring from musicians, actors, fans across country, जहाँ दूर दूर से उनके लिए messages आ रहे हैं। सो उनकी यादगार गाने तो ज़्यादा साउथ के हैं, लेकिन हिंदी फिल्मों में भी उन्होंने म्यूज़िक लवर्स को बहुत से मेमोरेबल गाने दिए। एक गीत आपने अभी अभी सुना, मोहम्मद अजीज़ के साथ गाया था। सम ऑफ हर वेल नोन बॉलीवुड नंबर्स आर लाइक यार बिना चैन कहाँ रे, पप्पी लहरी के साथ साहिब फिल्म में गाया था वो गीत, एंड सुन रूबिया, तुमसे प्यार हो गया, मर्द का गाना, एंड दिल में हो तुम, सत्यमेव जयते का गीत। एंड जब मैं सत्यमेव जयते का वो गीत जब भी सुनती हूँ तो मुझे हमेशा लगता है वो गीत आशा भोसले गा रही हैं या एस जानकी। सो आज भी मुझे यही लग रहा था कि ये एस जानकी की आवाज़ है या आशा भोसले की। यू कैन कन्फर्म, वैसे मैंने 3-4 दफ़ा चेक किया और वो गीत एस जानकी जी ने ही गाया और बहुत खूबसूरत गाया। आई एम गोइंग टू प्ले इट इन अ शॉर्ट व्हाइल, तो आप सुनिएगा। ऐसे बहुत से मीठे मीठे गीत उन्होंने हमें दिए हैं, ईश्वर उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दे और उनकी आत्मा को शांति। आइए अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन ये भी बता दूं कि दूसरा गीत जो फर्स्ट सॉन्ग था इस आवर का, वो मैंने चुना था फिल्म मृत्युदंड से। मृत्युदंड फिल्म आज ही के दिन रिलीज हुई थी 1997। इस फिल्म में माधुरी दीक्षित थी, शबाना आज़मी थे एंड अयूब खान थे। प्रकाश झा साहब ने ये फिल्म बनाई थी। आनंद मिलिंद का था संगीत। उम्मीद करती हूँ वो भी गीत आपने पसंद किया।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Where your £1 in British sterling can get you up to 127 rupees and 20 paisas today. And don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. Terms and conditions apply.
1: India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Laika Gold.
3: Laika Gold.
4: Laika Radio.
1: Football score updates. Brought to you by Rack Law Solicitors. Specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates and for other legal requirements.
0: आज रात को मैच होने वाला है, यूके टाइम 10 बजे शुरू होगा। नॉर्वे एंड इंग्लैंड के बीच में बहुत बड़ा मैच है, ये क्वार्टर फाइनल्स का मैच है, तो जो फुटबॉल प्रेमी हैं दे विल बी ग्लूड टू द टेलीविजन। और बता दें कि डोंट फॉरगेट यू कैन गेट योर 15 मिनट्स फ्री लीगल एडवाइस विद अवर स्पॉन्सर्स रैक लॉ इफ यू मेंशन लाइका।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
5: People across the country are feeling all warm and fuzzy about their heat pumps.
6: Installing it during the renovation was an easy call. The bathroom tiles, however.
7: It's much nicer than your boiler. The place is just always warm and cosy like.
8: The government grant was the help we needed to start upgrading.
7: You get a lovely steady temperature. Walking around without my slippers, are you?
5: Feel all warm and fuzzy inside with a £7,500 government grant towards your heat pump at gov.uk/clean energy.
9: Eligibility criteria apply. See website for details.
1: Sarita Summerwall with your weekend classics. Like a
10: gold. If you're ready to grow your business, at Barclays we say, let's go. From opening that second store to boosting your production, let's get growing. Whatever the goal for your business, with our £22 billion lending fund, we're ready to back UK businesses like yours. Search Barclays Business Banking. Barclays, backing your future. Subject to normal lending assessment, status and application. Terms and conditions apply.
11: Location, location, location.
12: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
11: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
12: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
11: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
12: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
11: And the best part, townhouses and villas, Greens, start from just £711,000.
12: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
11: High appreciation.
12: In Dubai.
13: Chai break ho ya busy work day. Sabko chahiye ek perfect cup of chai.
14: Aur ab Royal Chai laaye hain smart solution for your business.
13: Get a Royal Chai vending machine free. Perfect for cafes, restaurants, offices, shops, petrol stations or community spaces.
14: Rich, authentic taste every single time.
13: Royal Chai, brewed for business.
14: Email now. info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
15: આ સપ્ટેમ્બર પેરિસમાં ઇતિહાસ લખાઈ રહ્યો છે.
16: બીએપીએસ મંદિરનું ઓપનિંગ અને સ્ટાર ટૂર્સ તમને લઈ જઈ રહ્યું છે આ પવિત્ર યાત્રા પર.
15: યુરોપના 3-9 દિવસના ટૂર્સ,
16: ફ્રાન્સ, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, ઇટલી અને જર્મની સાથે
15: દર્શન પણ અને યુરોપ પણ.
16: સીટ્સ જલ્દી ભરાઈ રહી છે, આજે જ બુક કરો સ્ટાર ટૂર સાથે.
15: કોલ 02089002323. ધ સ્ટાર ટૂર્સ,
16: ટ્રાવેલ વન્સ એન્ડ યુ વિલ ટ્રાવેલ અગેન એન્ડ અગેન.
17: એટ બ્રેસ્ટ કેન્સર નાઉ વી નો ચેકિંગ યોર બ્રેસ્ટ કેન ફીલ ડોન્ટિંગ, બટ ઇટ્સ અ સિમ્પલ એઝ TLC. ટચ, look, check. Touch your breasts, look for any changes, check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer, so it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/TLC.
15: यार कभी कभी अपने देश के छोले भटूरे, राजकचोरी और मिठाइयों की बहुत याद आती है,
16: तो फिर इंतजार क्यों? हॉन्स्लो एंड साउथ हॉल के बाद अब बीकानेर वाला आ गया है गैंसिल इल्फोर्ड में।
15: सच?
16: बिल्कुल, देश का असली स्वाद, लाजवाब मिठाइयाँ और अपनेपन की खुशबू सब एक ही जगह।
18: आज ही विजिट करें बीकानेर वाला 513-519 क्रैनबुक रोड, गैंसिल इल्फोर्ड, IG2 6HA। कॉल करें 07555-506015। बीकानेर वाला, टेस्ट ऑफ इंडिया नाउ इन Ilford.
19: Like a Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB Digital Radio par. Alexa pe bolo play Like a Gold aur online suno likeagold.com pe. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
20: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: जब जब इस गीत को मैंने प्ले किया तब तब मुझे यही लगा ये आशा जी की आवाज़ है, लेकिन क्रेडिट्स में जब हम देखते हैं तो एस जानकी जी का ही नाम आता है जो आज इस दुनिया को छोड़कर चली गई हैं, लेकिन उनके गीतों के ज़रिए हम हमेशा उनको याद करते रहेंगे। उनका योगदान बहुत रहा संगीत की दुनिया में। शी वन 4 नेशनल फिल्म अवार्ड्स फॉर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर एंड रिसीव्ड मोर देन 30 स्टेट फिल्म अवार्ड्स अक्रॉस साउथ इंडिया। उन्होंने बहुत सी लैंग्वेजेस में गीत गाए, बहुत से म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए गीत गाए, एंड कुछ ऐसे यादगार हिंदी गाने भी हैं जो उनके गाए हुए बड़े मशहूर हुए, जैसे कि ये गाना जो अभी अभी प्ले हुआ है। इसके अलावा मैंने अर्लियर ऑन मोहम्मद अजीज़ जी के साथ उनका एक डुएट आप तक पहुंचाया, जिसे मैंने चुना था फ्रॉम द फिल्म, कौन सी फिल्म का गाना था वो, दैट वॉज ऑल्सो सत्यमेव जयते का गाना था, एंड उम्मीद करती हूँ कि आपने ज़रूर पसंद किया। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मेरे बहुत से साथी कह रहे हैं कि इनके और भी गीत शामिल कर दीजिएगा, सो आई विल डेफिनेटली एक और गीत ट्राई करूँगी कि मैं प्रोग्राम में शामिल कर पाऊँ। और अब अर्जुन जी, भारती जी, संध्या जी, हरप्रीत जी, हरीश रूटा जी, वत्सला जी, सभी के मैसेजेस हैं मेरे सामने। बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस लिखकर आपने भेजे हैं, जिनके लिए तहे दिल से आप सबकी मैं शुक्रगुजार हूँ। सुभाष परमार जी कहते हैं गीत सुनते हैं तो पता चल जाता है कि आपका प्रोग्राम चल रहा है। थैंक यू सो मच आपके प्यार का। महेंद्र बजारिया जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुदेश टकियार जी, थैंक यू। तोची जी, निर्मलन कीरत जी, भारती डी जी, उल्लास इन टोरंटो, जगतार जी इन वैंकूवर, एंड सहर, हाना, मृदु जी, इंतशा, मिसेस शेख, तोची जी एंड तोशी, अमृता जी आप भी सुन रही हैं, सोनी रावल जी थैंक यू, हसमती जी आपका भी, हंसा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, एंड भरत गंगा राम जी आप भी सुन रहे हैं प्रोग्राम, एंजॉय कर रहे हैं, थैंक यू।
1: फील गुड ट्रैक ब्रॉट टू यू बाय डेयरी वैली।
2: हैप्पी हलवाई ब्रिंग्स योर टेस्ट बड्स ओडल्स ऑफ हैप्पीनेस विद ऑथेंटिक गुलाब जामुन, रसमलाई, मोतीचूर लड्डू एंड मच मोर। विजिट happyhalwai.com।
0: जी हाँ, एस जानकी जी वाला गाया हुआ गीत डेयरी वैली वालों ने ही आप तक पहुंचाया था। और अब एक और बहुत प्यारा सा गीत आ रहा है, और ये फिल्म भी आज ही के दिन रिलीज हुई थी। कौन से ईयर में याद कीजिए, आप याद कीजिए और मुझे बताइए।
1: सरिता सबरवाल, द बिगेस्ट क्लासिक्स ऑन लाइक अ गोल्ड।

0: भाई प्यार का मौसम का जब गीत सुना हमारी हरप्रीत ने तो कहती हैं कि लिखती हैं कि शशि कपूर इतने हैंडसम इतने सुंदर लग रहे थे उस गीत में और उस फिल्म में भी। अच्छा याद रखती हैं बहुत कुछ अब। और आपने कहा है कि यहाँ तो अभी भी हम कार्डिगन पहन रहे हैं तो थोड़ी सी गर्मी हमें भी भेज दीजिए। ज़रूर ज़रूर दिल के मौसम को अच्छा रखिए, अपने आप गर्मी आप तक पहुँचती रहेगी। और क्रिकेट का मैच भी तो चल रहे हैं इस वक्त इंग्लैंड और इंडिया के बीच, जो लेडीज़ खेल रही हैं उनके बारे में बता दें। इंग्लैंड ने बनाए 257 रन्स और 3 खिलाड़ी आउट हो गए और इंडिया 110 रन्स बना चुके हैं और उनके भी 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं इन 10.1 ओवर्स में। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। इसी तरह से सुनते रहिएगा, जलाल आगा जी को भी हम याद करेंगे इन द नेक्स्ट आवर एंड उमा देवी यानी टुनटुन जी के भी एक आध गाना ज़रूर प्ले करने की कोशिश करूंगी। और अब प्रोग्राम का अगला गीत हमें पहुंचा देगा न्यूज़ तक, न्यूज़ के उस पार ही सरिता अब अपनी ज़ुबान खोलेगी। वैसे आप सुनते रहेंगे गीत भी और संदेश भी, सुनते रहिए।
1: This is like a gold. Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344, a 24-hour our line.
2: Chawal ho best, sab kare test, Disha rice ka hai zamana, Disha basmati rice.
3: Disha rice now available at Asian grocery stores nationwide. Available at Sony Cash and Carry, Singsbury's, Kachha Bazaar, Samir Bazaar, More Foods, Sira South Hall, Dagenham Supermarket, all exotic stores in Reading and Slough, and Pick and Save, Canton Road. Disha rice, come down and taste the difference.
4: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208-574-8410, दैट्स 8574-8410। साउथ हॉल ट्रेवल, at all protected.
5: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.60% on non-withdrawable fixed deposits.
6: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
7: At Breast Cancer Now, we know checking your breasts can feel daunting, but it's as simple as TLC. Touch, look, check. Touch your breasts, look for any changes, check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer, so it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/TLC.
8: Lotto from the National Lottery now gives you 2 chances to win with every ticket. So it could be you, and it could be you. You, and then the same you, again. You. 1 ticket, 2 chances to win. New Lotto. It could be you, and it could be you. See website for Lotto changes. Rules apply. Players must be 18 or over.
9: Mom, have you bought some of those delicious noodles?
10: You mean Koka, the king of noodles? Koka means delicious. Variety of flavors available in Koka packet, Koka cup and Koka bowl noodles. Suitable for vegetarians and halal approved. The king of noodles, Koka noodles, packets, cups and bowls, now available everywhere in the UK.
11: Sarita Sabharwal with your weekend classics.

0: वेलकम टू द लास्ट आवर ऑफ द शो। अगर अभी सुनना शुरू किया है तो पिछले दो घंटे आपने मिस कर दिए, तो मैं चाहूँगी कि हमेशा 4 बजे से लेकर 7 बजे तक मेरा ही साथ दिया करें। अगर आंखें रखनी है टेलीविज़न पर, देखना है तो देख सकते हैं, घर के कोई काम करने तो कर सकते हैं, लेकिन कान मेरी तरफ होने चाहिए, ठीक है। अच्छे अच्छे गीतों से आपका मनोरंजन करती रहूँगी। अब ये दो गाने जो आपने सुने वो रेयर हैं, मैंने बहुत देर बाद प्ले किए होंगे। क्या आपको याद है कि लास्ट कब सुने थे? जो पहला गीत था वो था फिल्म दुलारा से, एंड दुलारा तो इतनी ज़्यादा पुरानी फिल्म नहीं है, दुलारा 1994 की फिल्म है, जिसे विमल कुमार ने बनाया था, डायरेक्ट किया था इस फिल्म को, एंड संगीत था निखिल विनय का, एंड गीत में आवाज़ें आपने सुनी कुमार सानू एंड अलका याग्निक की। इस फिल्म में किस किस ने काम किया था? गोविंदा थे एंड करिश्मा कपूर थे। लेकिन जो दूसरा गीत आपने सुना वो रेयर हिट था, इंसाफ की मंजिल था इस फिल्म का नाम, और इसे बराज भूषण ने बनाया था। इस फिल्म में शेखर सुमन थे एंड दिलीप सिन्हा थे, एंड गाने इसके कंपोज किए थे चित्रगुप्त जी ने। मुझे उम्मीद है कि ये गीत भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। बहुत कम बजता है हमारे यहाँ से, लेकिन मैंने सुनाया और आपको अच्छा भी लगा होगा। इसमें लीना दार भी थी एंड लीना दास भी थी एंड पूनम देश गुप्ता भी थे। एनीवे अभी मुझे मैसेज मिला है, और ये मैसेज जयश्री जी ने लिखकर भेजा है, और लिखती हैं, बहुत अरसे के बाद आपका मैसेज मिला है, कि आप मुझे भूल गए थे क्या? बहुत दिनों बाद मैसेज लिखा। लिखती हैं, सरिता जी, टुडे माय हस्बैंड सुभाष परमार जीज बर्थडे, प्लीज़ कैन यू विश हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे जयश्री परमार एंड फैमिली, एंड प्ले अ नाइस सॉन्ग फॉर रफ़ी साहब का, कोई भी गीत सुना दीजिए। तो हो सकता है मेरी प्लेलिस्ट में और भी गाना हो रफ़ी साहब का, तो मैं ज़रूर उन्हीं के नाम करती हूँ। सुभाष परमार जी, आपको हमारी तरफ से, हमारे सारे लाइका के परिवार की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी ज़िंदगी में ऐसे दिन बार बार आएँ, हज़ार बार आएँ, आप खुशियाँ मनाते रहें। एंड आपके साथ साथ अगर कोई भी जो इस वक्त प्रोग्राम सुन रहे हैं, आपका बर्थडे है, शादी की सालगिरह है, या कोई और खुशी का मौका है, तो बराबर के शरीक हैं हम आपकी खुशियों में। आपको बहुत बहुत मुबारक।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Right, your £1 in British sterling can get you up to 127 rupees and 20 paisas. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app ke zariye. TNC applies.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Laika Gold.
3: Laika Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probate, and for other legal requirements.
0: चलिए भी रात को 10 बजे से पहले अपने सारे काम खत्म कर लीजिएगा, ताकि आप आराम से बैठ के मैच देख सके। नॉर्वे एंड इंग्लैंड के बीच मैच होने वाला है, एंड दैट इज द क्वार्टर फाइनल्स, सो ज़रूर देखिएगा। और इसके साथ ही एक मैसेज है रेकलॉ वालों का, और वो ये मैसेज है कि डोंट फॉरगेट यू कैन गेट योर 15 मिनट्स फ्री लीगल एडवाइस विद देयर स्पॉन्सर, हमारे जो स्पॉन्सर हैं रेकलॉ, इफ़ यू मेंशन लाइका।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
4: People across the country are feeling all warm and fuzzy about their heat pumps.
5: Installing it during the renovation was an easy call. The bathroom tiles, however.
6: It's much nicer than your boiler. The place is just always warm and cosy like.
7: The government grant was the help we needed to start upgrading.
6: You get a lovely steady temperature. Walking around without my slippers, are you?
4: Feel all warm and fuzzy inside with a £7,500 government grant towards your heat pump at gov.uk/clean energy.
8: Eligibility criteria apply. See website for details.
1: Sarita Summerwall with your weekend classics.
9: Like a gold.
10: I'll be there yet.
2: it.
9: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
2: Relax, I've booked the Uber already.
9: How? My roaming isn't even working yet.
2: I switched to Simsy before we left London.
9: Simsy? Since when are you the tech expert?
2: Since I decided I want a stress-free holiday.
10: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simsy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simsy, holiday travel simplified.
11: T's and C's apply.
12: Location, location, location.
13: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
12: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
13: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
12: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
13: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
12: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
13: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
12: High appreciation.
13: In Dubai.
14: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन.
15: काजल्स कटियो फॉर एवरी celebration, every moment and every unforgettable entrance.
16: Discover Gorgeous Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
15: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
16: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
15: Gorgeous Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
16: Visit gorgeouscouture.co.uk.
17: भाखरा क्रंच, भाखरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक.
18: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर.
17: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
19: Discover Malta and Gozo with a Twin Center Island Escape. Fly from a choice of UK airports year-round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
20: SonaTours.co.uk Japan Cherry Blossom Tour in March and April 2027. Book before the end of July and get up to 400 off. Call SonaTours on 020
21: Laika Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa, and LaikaGold.com.
22: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Laika Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: शकील साहब ने लिखा था, शकील बदायूनी जी ने इस गीत को फिल्म घराना के लिए, एंड इस फिल्म के इस गीत के लिए इन 1962 ही वन फिल्म फेयर बेस्ट लिरिसिस्ट अवार्ड। क्या बात है, कितना प्यारा गाना, और उम्मीद करती हूँ मेरी चॉइस आपको पसंद आई। वैसे आपके मैसेजेस तो यही बता रहे हैं कि हर गीत के बाद ये लिखना कि क्या बात है सरिता, क्या कितना अच्छा लगता है जब कोई भी इंसान किसी भी क्षेत्र में कोई भी मेहनत करता है, किसी भी तरह की मेहनत करता है और लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। इट्स सच अ ग्रेट फीलिंग। थैंक यू एवर सो मच। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिएगा। और शकील साहब के लिखे हुए बहुत से यादगार गीत हैं, साहबीबी और ग़ुलाम के, इसके अलावा चौथवीं का चांद के लिए भी उन्हें अवार्ड मिला था, एंड देन 20 साल बाद का याद है वो गीत, कहीं दीप चले कहीं दिल। जब मैं यंग थी तो ये गाना बहुत गाया करती थी, लेकिन अब नहीं। और मेरी सिस्टर भी हमेशा कहती थी कि यही गाना तुझे आता अच्छा लगता है, यह सजा का गाना जो था, तुम न जाने किस जहां में खो गए, वो गीत भी मेरे दिल के बहुत करीब है। सुभाष जी, आपने कहा था रफ़ी साहब का कोई गीत आपके नाम कर दिया जाए, आपका बर्थडे, तो ये गीत मैंने आपके नाम किया।
1: Brought to you by Derry Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Derry Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: और इस गीत के जरिए हम याद कर रहे हैं जलाल आगा जी को। वैसे तो उन्हें याद किया जाता है, बहुत याद किया जाता है महबूबा महबूबा वाले गाने के साथ, लेकिन आज ही प्ले हुआ ये गाना सुबह।

0: है।
1: और इसी गीत के साथ हमने याद किया कि नेन जलाल आगा साहब को, वो टैलेंटेड बॉलीवुड कैरेक्टर एक्टर, बेस्ट नोन फॉर हिज लाइवली स्क्रीन प्रेजेंस इन 1970s एंड 80s। ही वाज बोर्न ऑन 11th जुलाई 1945 एंड ही वाज सन ऑफ वेटरन कॉमेडियन आगा। And as a child artist, he played the young Prince Salim in the classic Mughalai Azam before going on to appear in more than 60 Hindi films, including Julie, Garam Hawa, Shole, Maan Jaiye, jiska geet aapne suna, Nokar, Baat Ban Jayegi, and he passed away on 5th March 1995 at the age of 49, kyunki unhe heart attack hua tha, cardiac arrest se unki डेथ हो गई थी। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सी फिल्मों में काम किया, लाइक मंजली दीदी इन 1966, बासु चैटर्जी की सारा आकाश इन 1969 एंड इसके हवा फिल्म थी एक, उसमें भी थे, कर्ज में भी थे, ऋषि कपूर वाली कर्ज में इन 1980, जुनून इन 1979 एंड गमन इन 1978। बहुत सी फिल्मों में काम किया। थोड़ी सी बेवफाई, घर घर की कहानी बहुत प्यारी फिल्म थी और इसी फिल्म से मैंने चुना है आज के प्रोग्राम का अगला गीत। लेकिन जो गीत आपने अभी अभी सुना वो आप तक पहुंचाया।
2: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
3: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
4: Leica Gold.
5: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

क्या बात है, ऐसे ऐसे गीत आपको सिर्फ और सिर्फ यहीं सुनने को मिलते हैं। और थैंक यू आपका भी जो मुझे हमेशा इनकरेज करते रहते हैं और हर गीत के बाद लिखते रहते हैं कि कितने पसंद आ रहे हैं आपको ये सारे के सारे गाने। थैंक यू, सुनते रहिएगा।

भाई मेरी मर्जी नहीं है जाने की, लेकिन जाने का वक्त है तो जाना ही पड़ेगा ना। अगर जाए ना आने वाला, वैसे भी प्यार समझ ही नहीं आता है, इसलिए जो आता है उसको जाना होता है। और मेरे बाद बिल्कुल तैयार है सैंडी शाह आपका साथ निभाने के लिए, और वो आपका साथ देंगे टिल 10 o'clock। 10 बजे हमारी ओवरनाइट सर्विस शुरू होती है, गोल्ड नाइट्स जिसे हम कहते हैं, बहुत प्यारे प्यारे प्रोग्राम्स होते हैं। एंड देन वीकेंड पे सभी प्रेजेंटर्स आते हैं, बारी बारी अपना काम करते हैं। लाइक सुबह दीप राजा आ जाएंगे, उनके बाद रितु शर्मा आती है, फिर अनुराग आते हैं, फिर सरिता की बारी आ जाएगी, और मेरे बाद फिर सैंडी शाह आएंगे विंटेज गोल्ड प्रोग्राम लेकर। और मेरे जाने के बाद अभी कौन आएंगे? वेल, सैंडी शाह होंगे यहाँ, एंड देन नेक्स्ट अंकुर विल बी इन मैनचेस्टर। तो अपने लोकल प्रेजेंटर्स को भी, आप वहाँ के प्रेजेंटर्स को भी सुन पाते हैं। तो अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। माइक्रोफोन के इस तरफ से अब सरिता आपसे विदा लेने जा रही है, कल फिर मिलने का वादा है अगर ज़िंदगी ने साथ दिया। जिन मेरे साथियों ने पिछले 3 घंटे से बाकायदा मेरा साथ दिया है, सुनते रहे हैं, अपने मैसेजेस भेजते रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ये भी कह दूँ कि आपने जो सेल्फीज भेजी थी, हाँ, वो भी उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। समर रियली रियली फनी, बहुत मौसम का पता चल रहा था कि आप मौसम को कितना इन्जॉय कर रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं। हरप्रीत तो हमारी लिखती हैं कि भाई थोड़ा सा गर्मी हमें भी भेज दो वैंकूवर में, तो ज़रूर भेज रही हूँ मैं आपको, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। अब अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। माइक्रोफोन के इस तरफ से इजाज़त, कल फिर मिलने का वादा है, इसी तरह से सुनते रहिए।

0: ये हमेशा साथ निभाते रहिएगा। और बड़ा अच्छा लगता है जब आप अपने होने का एहसास दिलाते हैं, बताते हैं कि आप हमारे आसपास हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए लवली एंड सुपर्ब इवनिंग।
1: ये है लाइका गोल्ड
2: रेडिंग। तैयार हो जाइए, रेडिंग मेला आ रहा है पाम पार्क में 1st और 2nd अगस्त। दोपहर 12 से शाम 7 बजे तक एंजॉय कीजिए लाइव परफॉर्मेंसेस बाय हरभजन तलवार, मैस बोनाफाइड, मानक ई एंड सोना वालिया, प्लस लाइव सिंगिंग, डांस, शॉपिंग, टेस्टी फूड, फन फेयर, ढोल और डीजे। एंट्री बिल्कुल फ्री। मोर डिटेल्स के लिए कॉल करें 07517801701। रेडिंग मेला पाम पार्क, वोकिंगहम रोड, रेडिंग, RG6 1LF। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो।
3: चावल हो बेस्ट, सब करे टेस्ट, दिशा राइस का है जमाना, दिशा बासमती राइस।
4: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड, अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी, सिंग्सबरीज, कच्चा बाजार, समीर बाजार, मोर फूड्स, सीरा साउथ हॉल, डेगनम सुपरमार्केट, ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाव एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड। दिशा राइस, कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस।
5: आपके सामने एक रेड बटन है, नहीं दबाना था।
6: The madness is back, धमाल 4।
7: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा।
6: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jafri. Return in धमाल 4, directed by Indra Kumar.
8: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी?
6: Watch the biggest family entertainer, धमाल 4, in cinemas now.
9: पता नहीं ऐसे dangerous situation में मैं automatically आगे कैसे आ जाता।

0: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, Gold Souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
1: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
2: Southall Travel Auto Protected.
3: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब हैं। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉग के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं।
4: Minar Jewelers, Wandsworth's Business Award winners. Best Customer Service 2026, come and find out why. Beautiful diamond engagement rings starting from £500. Phone 0208-767-7547.
5: Bhaiyo behno, khushkhabri. 1905 se asli swad, Bikaner wala. Ab Ilford mein, India's famous chole bhature. A match made in heaven. Family ko lao, flavors of India ka maza lo. Mile 513-519 Cranbrook Road, Gansu, Ilford, IG2, 6HA, Bikanerwala, now in Ilford.
6: Sarita Sabharwal with your weekend classics.
7: Like a Goon, officially London's number one Asian retro music station.

0: Vintage Gold on Leica Gold. WhatsApp message Leica Gold now on 0744-232323.
1: Hi, मैं हूँ अश्विनी. हर शाम 7 से 10 बजे तक सुनिए मुझे Leica Gold Radio London and Greater Manchester in the evening show with Ashwini. Features बड़े ही interesting, amazing आप सभी के लिए.

0: on 020-8574-8410. That's 8574-8410.
1: Safo Travel. Auto Protected.
2: श्री जगन्नाथ सोसाइटी यूके वार्मली इनवाइट्स यू टू रथ यात्रा 2026 अ डिवाइन सेलिब्रेशन ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ सैटरडे 18 जुलाई सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक नवनाथ सेंटर हीज UB3 1AR में भजन आरती सैक्रेड रथ पुलिंग और प्रसाद का लाभ जरूर ले। इवेंट फ्री है लेकिन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। फ्री पार्किंग भी सिर्फ रजिस्ट्रेशन के साथ अवेलेबल होगी। रजिस्टर नाउ एट श्रीजगन्नाथ.uk/events/rath-yatra2026। जय श्री जगन्नाथ।

0: जो समझाए उसी की मची धूम, जो समझाए उसी की मची धूम,
1: जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम।
0: बाजू

0: visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: Gajal's Couture, for every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
2: Discover Gajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
1: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
2: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
1: Gajal's Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
2: Visit Gajal's Couture. Couture.co.uk.
3: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
4: This is Sandy Shah on Gold Drive.
5: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए? लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com।
4: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
6: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: ये है लाइका गोल्ड।
1: आपके सामने एक रेड बटन है,
2: दबा दिया।
1: नहीं दबाना था।
3: The madness is back, धमाल 4।
4: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा।
3: Starring अजय देवगन, अर्शद वारसी, रितेश देशमुख एंड जावेद जाफरी। Return in धमाल 4, directed by इंदिरा कुमार।
5: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी।
3: Watch the biggest family entertainer, धमाल 4, in cinemas now।
6: पता नहीं ऐसे dangerous situations में automatically आगे कैसे आ जाता।
7: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन।
8: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
9: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
10: Southall Travel, at all protected.
11: Location, location, location.
12: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
11: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
12: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
11: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
12: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
11: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
12: Call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
11: High appreciation.
12: In Dubai.
13: Like a gold par har raat ki yahi reel. Purane magar

0: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
1: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
2: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर
1: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
2: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन
1: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स
2: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50+ एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी
1: एंड द बेस्ट पार्ट टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000
2: टू बुक कॉल our London office on 02039635757 Greens by Danube prime location
1: high appreciation
2: in Dubai
3: aapke samne ek red button hai
4: daba diya
3: nahi dabana tha
5: the madness is back dhamal 4
6: gulabi saadi mein tu lag raha
5: starring Ajay Devgan Arshad Warsi Ritesh Deshmukh and Javed Jafri return in dhamal 4 directed by Indra Kumar
7: gulori bina chatni kaise bani
5: Watch the biggest family entertainer, Dhamal 4, in cinemas now.
8: Pata nahi aise dangerous situations mein automatically aage kaise aa jata.
9: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दिल डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410 दैट्स 85748410 साउथ हॉल ट्रेवल At all protected.
10: At Breast Cancer Now, we know checking your breasts can feel daunting. But it's as simple as TLC. Touch, look, check. Touch your breasts, look for any changes, check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer, so it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/T. L.C.
11: Ears are great, aren't they? One on each side of your head for stereo. It's because of ears that radio ads can amplify your advertising. 40 million adults listen to commercial radio every week. That's 80 million ears, give or take. See radio differently at radiocentre.org.
0: Classic Nagmi, aapke apne Laika Gold par.

0: चुप हो जा अपने लाडले, फूफा के भतीजे लोरी
1: लोरी लोरी
0: हे मई लोरी। अरे लोरी सुना सुना के सुलाती है नारियां, ये मर्द भी कर सकते हैं।
1: मर्द जिंदाबाद।

जला मुझको गुस्सा ना दिला, तुझसे फरियाद करूं ले तेरे पाँव फरूं, कहना मेरा मान ले तू, ये भी अब जान ले तू, ये भी अब जान ले तू, जान ले तू, जान ले तू, थाकी गयो फरी पर नहीं समझ तो बेशरम। हाँ अब भी अगर तू चुप ना हुआ तो तोड़ दूंगा।

0: is like a gold.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
2: देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग,
1: डेजर्ट सफारी,
2: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
1: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
2: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
0: साउथ हॉल ट्रेवल, auto protected.
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
4: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
3: high appreciation
4: in Dubai.
5: रात भर न थमे न रुके, क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर।

0: लाइका गोल्ड पर हर रात की यही रीत, पुराने मगर सदा बहार गीत।
1: तेरे नैना,
2: तेरे नैना, तेरे।
1: तुम ऐसा करो, ये गाओ।

0: biggest classics throughout the night, non-stop on Gold Nights. This is Like a Goal.
1: आपके सामने एक रेड बटन है.
2: दबा दिया.
1: नहीं दबाना था.
3: The madness is back. धमाल 4.
4: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा.
3: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jafri. Return in धमाल 4. Directed by Indra Kumar.
5: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी.
3: Watch the biggest family entertainer, Dhamal 4, in cinemas now.
6: पता नहीं ऐसे dangerous situations में मैं automatically आगे कैसे आ जाता.
7: You know how fans shout at football matches?
8: Wake up!
7: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too. Because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
9: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइक आर रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk.
10: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ सिर्फ लाइका गोल्ड पर.